एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, आज है मंगलवार, आज है सोमवार, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। आज की हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 होने को हैं। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं महेंद्र कपूर के स्वरों में इस भक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हरि ओम शरण और नंदनी शरण के स्वरों में ये प्यारा सा भक्ति गीत। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला भक्ति गीत नरेंद्र चंचल के स्वरों में।

श्रोताओं, इसी भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति धारा अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज के चिंतन का, तो सुनते हैं आज का चिंतन।

अलौकिक तत्व है। अतः भौतिक और आध्यात्मिक तत्व, मनुष्य का जीवन शरीर और आत्मा इन दो के संयोग से संचालित है। शरीर भौतिक तत्व है और आत्मा सूक्ष्म अलौकिक तत्व है। अतः भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों के पारस्परिक संयोग और सहयोग से जीवन सुचारू ढंग से चलता है। दोनों ही तत्वों की समझ व्यक्ति को आवश्यक है और तभी जीवन सुखी हो सकता है। भौतिकता के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान कार्यरत है। विगत 2 शताब्दियों में भौतिक विज्ञान ने जो अन्वेषण, आविष्कार और नव निर्माण किए हैं, वे विचित्र, बहुपयोगी और निश्चित रूप से महान हैं। जीवन का कोई क्षेत्र उससे अछूता नहीं है। उन उपलब्धियों ने मानव जीवन को अधिक सरल और सुखद बनाया है। किसी भी क्षेत्र की बात करें, सभी में भारी उन्नति हुई है। यातायात, संचार, स्वास्थ्य, उद्योग, उत्पादन, शिक्षा या अंतरिक्ष और गहन गंभीर सागर तल में पहुंचकर नई प्राप्तियों और सुविधाओं की बातें करें तो विगत 2 शताब्दियों पूर्व मानव जीवन की कठिनाइयों को दूर कर भौतिक विज्ञान ने क्रमिक विकास कर जीवन को बहुत अधिक सुविधायुक्त और सुखद बनाया है। यह प्रगति लगातार जारी है और भविष्य में और भी अधिक सुविधाओं की प्राप्ति की कल्पना की जा सकती है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, जिनसे हम क्रमशः देखने, सूंघने, सुनने, चखने और स्पर्श का अनुभव करते हैं, उन 5ों के लिए नए नए सुख जुटाए जा रहे हैं, परंतु उनका संचालक मन है जो आत्मा का अभिन्न अंग है। आध्यात्म मन और आत्मा का विज्ञान है। जब तक आध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्नति नहीं की जाती, तब तक भौतिक सुख सुविधाएं जीवन को पूर्णता और शांति नहीं दे सकती। जहां तक आध्यात्म के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की बात है, वो हमारे देश में प्राचीन काल से ही, जब भौतिक विज्ञान अबोध था, की जा चुकी है। हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद, उपनिषद इन आध्यात्मिक ज्ञान और उपलब्धि की प्रक्रियाएं समझने की बातों से भरे पड़े हैं। सारा विश्व इस बात को मानता है, किंतु विगत कुछ वर्षों की भौतिक उन्नति के चकाचौंध ने हमें उस ओर से विमुख कर दिया है। परिणामतः आज की सार्वदेशिक और सार्वकालिक अशांति और अनैतिकता ने मानव जाति को दुखों के गर्त में डाल दिया है। इससे उद्धार तभी संभव है जब मानव जाति आध्यात्म विज्ञान को भी महत्व देने तत्पर हो, उसकी गहराइयों को समझे और जीवन में उतारे। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों का समन्वय ही जीवन की पूर्णता और समृद्धि प्रदान करेगी, क्योंकि मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक निर्मितियों का समन्वयक है। इसमें सम्मिलित विकास से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और सही दृष्टिकोण का विकास होता है। संसार का सारा वैभव और विलास और धन संपत्ति का भंडार भी मनुष्य के मन को तब तक शांति और सुख नहीं दे सकते जब तक कि उसकी मनोवृत्तियां निष्कलुष, शुद्ध और पवित्र न हो। दूसरों के जीवन को देखने और समझने में उसकी दृष्टि पावन न हो और मन में उदारता और करुणा की भावना न हो। सर्वभूत हिते रतः इसकी भावना बलवती न हो और आत्मा निर्दोष न हो। आध्यात्म विज्ञान का ज्ञान मनुष्य को पावन और उद्धार बनाता है। जीवन को पारलौकिक

0: सुख की ओर ले जाता है और भौतिक सुखों का अपरिग्रह कर सबके लिए समत्व का भाव जगाता है। वास्तव में भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान के बिना अधूरा है। दोनों का समुचित समन्वित विकास ही इस संसार में मानव जाति मात्र के लिए नहीं वरन समस्त प्राणी जगत के सुख और समृद्धि के लिए हितकारी होगा। दोनों के समुचित ज्ञान से संसार में अनैतिकता, हिंसा, असमानता दूर होगी, पारस्परिक प्रेम भाव की वृद्धि होगी जो वास्तविक आनंद का मूल है। आध्यात्म का अभाव ही संसार में दुखों का प्रमुख कारण है। हर धर्म यही तो समझाता है, पर विभिन्न धर्मावलंबियों ने दूषित मनोभावों के कारण उसे कम ही समझा है।
1: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम, बुध, गुरु और शनिवार को।
2: हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रहे।
1: साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियां,
3: प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली।
1: मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद,
3: जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही की पसंद के चंद गीत।
4: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
1: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत
3: FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान, श्री लक्ष्मी शंकर रामकृष्ण चंदेश्री और इनके साथियों की आवाजों में।

ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषि के उद्गार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ शोभ ना हो, जो राग विराग छल कपट दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन विष से भी घातक लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है, उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहां तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहां अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया पतित पावनी गंगा की धारा ले आई थीं, जहां अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम, चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस स्थान। आवाजें थी लक्ष्मी शंकर, रामकृष्ण चंदेश्री और इनके साथियों की। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम लोकरंजनी का। लीजिए पेश है कार्यक्रम लोकरंजनी। कार्यक्रम में आज की कलाकारा हैं प्रतिष्ठा भारद्वाज और इनके साथी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय सुबह के 7 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष
2: और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने सूजन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई।

पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे

0: उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए डालते हैं एक नजर आज की दोनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 7:20 पर आप सुनेंगे क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से। जन उपयोगी सूचनाओं का कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सुनेंगे सुबह 7:50 पर। सुबह 8 बजे प्रसारित होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से तथा अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे सुबह 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से। 8:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आप सुनेंगे अगला प्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से। सुबह 10 बजे प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल से, भोपाल केंद्र से। 10:05 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज की बात का विषय होगा इंटरनेशनल म्यूजियम डे के उपलक्ष में संस्कृति संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। इसके साथ ही कार्यक्रम में होगी मुलाकात पोषण एनीमिया और महिला स्वास्थ्य, इस विषय पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी से बातचीत। हेल्थ टिप्स में हम जानेंगे गर्मियों में पाचन को सही रखने के उपायों के बारे में, साथ ही कल के आकर्षण और कुछ फिल्मी गीत। सुबह 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। दोपहर 2:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से तथा 2:15 पर प्रसारित होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा इतिहास और ज्ञान का खजाना है हमारे संग्रहालय। इसके बाद कार्यक्रम में आप सुनेंगे साइबर जगत, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचे। इसके बाद कार्यक्रम में होंगे इनसे मिलिए, कल के आकर्षण और कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे शाम 6 बजे। भक्ति गीतों का कार्यक्रम गोधुली आप सुनेंगे 6:05 पर। 6:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। गजल भजन और गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे 6:50 पर। 7:10 पर आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार। 7:20 पर होगा हमारे अन्नदाताओं का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें आज की बात का विषय होगा विश्व संग्रहालय दिवस। सामयिक कृषि चर्चा में आप सुनेंगे आम के बागों की रखवाली भी जरूरी है। इसके बाद कार्यक्रम में होंगे कुछ लोकगीत, भेंट वार्ता, श्रृंखला में होगी बातें खेती किसानी की, बाजार भाव और मौसम के बारे में जानकारी। रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। 8:30 पर होगा कार्यक्रम हमारा बैतूल। 8:45 पर प्रसारित होगी समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:00 से 10:00 तक आप सुनेंगे अगला प्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे पेश होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर, जिसमें आज के कलाकार होंगे कैलाश खैर। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से तथा 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। तो ये थे श्रोताओं आज की दोनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय सुबह के 7:10 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कल होगा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। स्वीडन के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में लापरवाही भारी पड़ी। एसडीओपी और एसडीएम समेत 4 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में गर्मी का कहर, राजगढ़ में पारा 45 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया 28 जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे पहुंचेंगे। 43 साल में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर जा रहे हैं। वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कल तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें 5 नॉर्डिक देशों के प्रमुख शामिल होंगे। ग्रीन एनर्जी, समुद्री अर्थव्यवस्था, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं कल श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने कंपनियों से मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने की अपील की।
1: स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
0: स्वीडन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों को कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के साथ श्री मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। जबलपुर में कल हाईकोर्ट के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म एक साथ लॉन्च किए गए। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अब कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑर्डर की डिजिटल कॉपी और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकेगी। एआई से लैस प्रथम सिस्टम और संकेत वाणी ऐप भी लॉन्च हुई जो सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की मदद करेगी। प्रदेश में आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा। इस चैटबॉट से लोग घर बैठे सोलर पैनल लगवाने की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया समझ सकेंगे। रायसेन में बीजेपी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कल खत्म हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत होते हैं। वहीं विदिशा में श्री चौहान ने कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की।
2: यहाँ मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज में अगर डिटेल मिलता है तो वहाँ ट्रीटमेंट का जो शुरू करेंगे कैंसर का इलाज पहले ट्रीटमेंट उस जगह पर वीनो सर्जरी से शुरू करें। मुझे विशेष कर चिंता थी मेरी बहनों की, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बड़ी संख्या में होता है और बहनें बताती नहीं कि आया कि एक व्यापक पैमाने पर स्क्रीनिंग हो जो 5, 6 और 7 जून हो। तो टाटा मेडिकल और मेमोरियल वालों ने सुझाव दिया कि तीन दिन।
0: अब समाचारों में

0: एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: धार की भोजशाला में कल सुबह मां वागदेवी की प्रतिकृति गर्भगृह में स्थापित की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के बाद सुबह 6:27 पर मंत्रोच्चार और हवन के बीच यह पूजन संपन्न हुआ। 15 मई को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भोजशाला को मां वागदेवी का मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार नमाज की अनुमति दी गई थी। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। बैतूल के किसान कमलेश देशमुख ने आधुनिक तकनीकी अपनाकर खेती की तस्वीर बदल दी है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना का लाभ उठाते हुए उन्होंने खेती को घाटे के काम से निकालकर मुनाफे का व्यवसाय बना दिया है। उनकी ये कामयाबी जिले के दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
2: बैतूल जिले के एक युवा किसान कमलेश देशमुख ने आधुनिक तकनीकी को अपनाकर खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है। पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए उन्होंने न केवल अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। इस युवा किसान ने बढ़ती लागत और घटते मुनाफे को देखते हुए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई और खेती को व्यवसाय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया जिससे मध्य प्रदेश शासन की किसान हितैषी योजनाएं भी मददगार साबित हुई।
3: मैंने कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना से 9,60,000 रुपए का अनुदान लेकर कस्टमाइजिंग सेंटर स्थापित किया है। इसके साथ ही मैंने सुपर सीडर सेसर रोटावेटर को व्यवसाय का रूप देते हुए पहले वर्ष में 8,00,000 रुपए का और दूसरे वर्ष में 12,00,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया है।
2: आज कमलेश देशमुख क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका मानना है कि नई तकनीक योजनाओं का समुचित उपयोग और नवाचार की सोच से खेती को लाभकारी एवं टिकाऊ व्यवसाय बनाया जा सकता है। बैतूल से मयंक भार्गव।
0: देवास के टोककला के पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस और राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में तय मात्रा से ज्यादा विस्फोटक सामग्री रखी थी और सुरक्षा के इंतजाम भी कमजोर थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए जाएंगे जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं और 16 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत सम्मान के रूप में दिया जाएगा। 1954 से शुरू ये पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिने जाते हैं। भारतीय नौसेना ने भोपाल की अपर झील में अपना नौकायन केंद्र शुरू किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल इसका उद्घाटन किया। यह केंद्र नौसेना के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स को भी रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग का प्रशिक्षण देगा। 5 साल पहले शुरू हुई नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज योजना आज रंग लाने लगी है। देश में खिलौनों का उत्पादन बढ़ा है और चीन से आयात में काफी कमी आई है। विदेशी खिलौनों पर आयात शुल्क 20 से बढ़ाकर 70% किए जाने का असर साफ दिख रहा है। बाजार में अब घटिया और असुरक्षित खिलौनों पर भी लगाम लगी है। अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में उगने वाला नूरजहां आम अपने विशालाकार की वजह से दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। ये एक आम का वजन 2 से 5 किलो तक होता है इसलिए इसे किंग ऑफ मैंगो भी कहते हैं। बाजार में इसकी कीमत 1500 से 3000 रुपए प्रति आम तक पहुंच जाती है। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल राजगढ़ में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रतलाम और खंडवा समेत 28 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। अब खबर क्रिकेट की। आईपीएल में कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में आरसीबी धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर आईपीएल प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। खजुराहो में कल सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने 50 बिस्तरों वाले आयुष वेलनेस सेंटर और एलीट शिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में संभावना गतिविधि के तहत कोरकू, बुंदेली और बघेली लोक नृत्य गायन की रंगारंग प्रस्तुति हुई।

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने सागर से टीकमगढ़ तक का सफर सरकारी काफिले की जगह आम यात्री बस से किया। बैतूल में पर्यटन बोर्ड की जनजाति पर्यटन परियोजना के तहत बज्जरवाड़ा गांव में 3 नए ग्रामीण होम स्टे का उद्घाटन किया गया और विदिशा में 59,000 से अधिक किसानों से 5,09,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 43 साल बाद नॉर्वे पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। कल होगा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। स्वीडन के सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में लापरवाही भारी पड़ी। एसडीओपी और एसडीएम समेत 4 अधिकारी निलंबित। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। राजगढ़ में पारा 45 डिग्री। मौसम विभाग ने जारी किया 28 जिलों में लू का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए पेश है क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। श्रोताओं, कार्यक्रम यादों के झरोके से की शुरुआत करते हैं फिल्म संगम के इस गीत से, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। आवाजें हैं मुकेश और वैजंती माला की।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद सुनते हैं ये छोटा सा संदेश।
1: प्रिय किसान भाइयों, जरूर सुनिए अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी बैतूल FM 103.1 MHz पर रोज शाम 7:20 से 8 बजे तक, जिसमें आपके लिए है कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और ग्राम विकास पर ढेर सारी जानकारियाँ।
2: 12 से ज्यादा % अगर नमी का होगा तो वो बीज आपका खराब हो।
3: प्राकृतिक खेती में हमें विभिन्न प्रकार की फसलों को लेना चाहिए।
4: डेयरी फार्म में दूध में फेट का परसेंटेज यदि बढ़ाना है।
1: स्थानीय लोकगीत, मंडी भाव और मौसम का पूरा हाल चाल भी। तो सुनते रहिएगा कार्यक्रम किसान वाणी, ट्यून करें आकाशवाणी बैतूल 103.1 MHz पर, या डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप।
0: श्रोताओं, संदेश के बाद सुनते हैं फिल्म तीसरी कसम से आशा भोसले के आवाज में ये गीत। इस गीत की रचना की है शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: चुनाव अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म मेरे लाल से ये गीत लता मंगेशकर के स्वरों में, जिसकी रचना की है मजरूर सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आकाशवाणी बैतूल पर दे विज्ञापन और पाएं अपने उत्पाद या सेवाओं का अभिवादन।
1: जन्मदिन, रिटायरमेंट, शादी की सालगिरह या हो कोई शैक्षिक उपलब्धि या किसी दिन विशेष की देना हो बधाई, तो आकाशवाणी बैतूल है ना भाई।
0: ये बात ना जाना भूल कि विज्ञापनों के लिए आना आकाशवाणी बैतूल।
1: अपने विज्ञापन, प्रायोजन या प्रचार प्रसार के लिए हमसे संपर्क करें और पाएं विज्ञापनों की डायरेक्ट बुकिंग पर आकर्षक छूट और बोनस विज्ञापन।

0: हमारी विज्ञापन दरें हैं बहुत ही कम और प्रचार भी ऑन बैतूल FM।
1: तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें कार्यक्रम अनुभाग आकाशवाणी बैतूल कॉलेज रोड पर।

0: हमारे संपर्क क्रमांक है 07141234722 और मोबाइल नंबर है 9755553676।
1: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आम्रपाली से लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत। इस गीत की रचना की है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म रात दिन, रात और दिन का ये गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में। बोल है शैलेंद्र के और संगीत है शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। मोहम्मद रफी की आवाजों में बोल हैं हजरत जयपुरी के और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम यादों के झरोके से अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय सुबह के 7:50 हुए हैं। लीजिए पेश है जन उपयोगी सूचनाओं का कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज की पहली सूचना। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की जनजातीय पर्यटन ट्राइबल टूरिज्म परियोजना के तहत रविवार को बैतूल जिले के बज्जरवाड़ा गांव में 3 नए ग्रामीण होमस्टे का भव्य उद्घाटन किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बैक टू विलेज संस्था द्वारा बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों के कुल 5 गांवों में जमीन पर उतारा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे भूखंड वाले और आर्थिक रूप से कमजोर जनजाति परिवारों के लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत तैयार करना है। इन होमस्टे का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजाति मामलों के राज्य मंत्री भारत सरकार श्री दुर्गादास उइके द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं राज्य मंत्री श्री मोहन नागर, सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश राज्य मंत्री एवं अन्य विशेषगण उपस्थित रहे। श्रोताओं, सूचना समाप्त हुई।
2: प्रिय किसान भाइयों, जरूर सुनिए अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी बैतूल FM 103.1 MHz पर रोज शाम 7:20 से 8 बजे तक, जिसमें आपके लिए है कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और ग्राम विकास पर ढेर सारी जानकारियाँ।
3: 12 से ज्यादा प्रतिशत अगर नमी का होगा तो वो बीज आपका खराब होगा।
4: प्राकृतिक खेती में हमें विभिन्न प्रकार की फसलों को लेना चाहिए।
5: डेयरी फार्म में दूध में फेट का परसेंटेज यदि बढ़ाना है।
2: स्थानीय लोकगीत, मंडी भाव और मौसम का पूरा हाल चाल भी, तो सुनते रहिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। ट्यून करें आकाशवाणी बैतूल 103.1 MHz पर, या डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप।
6: आकाशवाणी बैतूल पर दे विज्ञापन और पाएं अपने उत्पाद या सेवाओं का अभिवादन।
7: जन्मदिन, रिटायरमेंट, शादी की सालगिरह, या हो कोई शैक्षिक उपलब्धि या किसी दिन विशेष की देना हो बधाई, तो आकाशवाणी बैतूल है ना भाई।

0: ये बात ना जाना भूल कि विज्ञापनों के लिए आना आकाशवाणी बैतूल।
1: अपने विज्ञापन प्रायोजन या प्रचार प्रसार के लिए हमसे संपर्क करें और पाएं विज्ञापनों की डायरेक्ट बुकिंग पर आकर्षक छूट और बोनस विज्ञापन।

0: विज्ञापन दरें हैं बहुत ही कम और प्रचार भी ऑन बैतूल FM।
1: तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें कार्यक्रम अनुभाग आकाशवाणी बैतूल कॉलेज रोड पर।

हमारे संपर्क क्रमांक है 0714123472 और मोबाइल नंबर है 9755553676।

0: कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम बुध गुरु और शनिवार को।
1: हमारी मुलाकातें हमेशा चलती रहे।
0: साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियाँ, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के चंद गीत।
2: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
0: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
3: श्रोताओं, इस संदेश के बाद सुनते हैं ये देशगान।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार

0: अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल

0: कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
5: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विज्ञानी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
7: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त

0: कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वी ए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर है 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए, बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा

0: था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
1: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमलेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: I am good, sir.
2: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
3: I like playing, sir.
4: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
5: Sir, I like singing.
6: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
7: Yes, sir.
8: We like.
2: Lovely butterflies?
7: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
7: Yes, sir. We like it.
2: That's very nice, children.
9: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
7: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
7: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
7: Like us?
2: Would you like to listen?
7: Yes, sir.
10: We love to listen the story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
7: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
7: Okay, sir.
11: We love to recite it.
2: As I lie on my back.
7: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
7: Looking up at the sky.
2: I see a big white bear.
7: I see a big white bear.
2: Looking down at me.
7: Looking down at me.
2: As I lie on my back.
7: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
7: Looking up at the sky.
2: I see a ship sailing.
7: I see a ship sailing.
2: On a white sea.
7: On a white sea.
2: As I lie on my back.
7: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
7: Looking up at the sky.
2: I see an elephant.
7: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me.
7: Waving its trunk at me.
2: As I lie on my back.
7: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
7: Looking up at the sky.
2: Oh, it's fun. It's fun to me.
7: Oh, it's fun. It's fun to me.
2: To see whatever I want to see.
7: To see whatever.
2: So children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
7: Yes, sir.
12: They are beautiful.
13: They are very big.
14: They change the shapes.
2: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
7: Yes, sir.
2: So kids, here comes the song. As I lie, what?
7: As

0: Did you like the song? So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: I have seen rainbow.
3: It has seven colors.
0: So children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
4: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bhatti Langlindo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
5: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
8: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
9: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
9: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
0: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
10: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
0: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.

8 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियाँ जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागवानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी

0: अनुभव किया था?
1: हाँ हाँ,
0: मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
2: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
2: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
2: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
2: बिल्कुल होता है,
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
2: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना
2: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
2: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
3: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूँ। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूँ।
3: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है, और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
4: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
3: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
5: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
5: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
5: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे

0: और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
1: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने, मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
1: अच्छा,
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हो तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़े गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलाइन लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाहिला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800044559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय
8: 9 बजने को है। अब से थोड़ी देर में
7: आप सुनेंगे
8: विविध भारती सेवा के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया
7: प्रतीक्षा कीजिए।

क्षेत्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए गब्बर इज बैक फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में। मनोज यादव ने इसे लिखा है, चित्रंतन भट्ट का संगीत।

आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। ये दिन एचआईवी एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन खोजने वाले वैज्ञानिकों

आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। ये दिन एचआईवी एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन खोजने वाले वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के प्रयासों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और ये समझना है कि सही जानकारी, सावधानी और समय पर जांच से इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। सुरक्षित जीवन शैली अपनाना, जागरूक रहना और भेदभाव से दूर रहना बेहद जरूरी है। आइए हम सभी मिलकर एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाएं और एक स्वस्थ संवेदनशील समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म हमारी अधूरी कहानी से। श्रेया घोषाल की आवाज, रश्मि विराग के बोल और जीत गांगुली का संगीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। संग्रहालय हमारी संस्कृति, इतिहास, कला और विरासत को संजोकर रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ हमें प्राचीन वस्तुएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ कलाकृतियां और सभ्यता, इन सब की अनमोल झलक देखने को मिलती है। संग्रहालय केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। आइए इस अवसर पर अपने इतिहास और संस्कृति को समझने, सहेजने और उससे जुड़ने का संकल्प लें। और लीजिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत मीका सिंह और नक्श अजीज की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल है ए आर रहमान की धुन।

0: बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल को किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच पे कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चयन से इन चीजों को संवारने और सहकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मेरे पास जाने कितने उड़ान बाकी, उस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हुए, ये किसी शहर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध

अनजान और अरिजीत सिंह की आवाजों में गाए इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती है, जंप कर जाती है। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: बहार।
1: हाँ, जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका निभाई।

1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

में बहारों की मंजिल 1968 में महल 1969 में आराधना पुरस्कार नया रास्ता 1970 में गोपी देवी पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।

0: Karina. Atina! Videra!
1: सन 1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी जिंदगी जिंदगी रिवाज बुनियाद हीरा बॉबी जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलुरु जाकर शिफ्ट हो गई। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीवी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलान ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को इन ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की। साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आई। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही

जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं।

के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। वो दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ हो।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आकाशवाणी से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी।

0: आलेख ताहिर खान का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भोपाल में इन दिनों गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दोपहर में सड़कों और बाजारों में सन्नाटा नजर आ रहा है। कल शहर का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
1: मौसम विभाग ने लोगों को धूप और लू से बचने की सलाह दी है। एमडीएम कॉलेज में एनसीसी के पूर्व कैडेट्स का चौथा एलुमनी फंक्शन आयोजित किया गया, जिसमें 1975 से अब तक के पूर्व कैडेट्स और नेवी ऑफिसर्स शामिल हुए। अब एमपी लॉकर एप्लीकेशन के जरिए लोगों को नगरीय सेवाएं भी मोबाइल पर मिलेंगी। इसमें संपत्ति कर, जलकर और लाइसेंस समेत 22 से ज्यादा दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। उन्होंने लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की। भोपाल से छोड़ा गया एक दुर्लभ सिनेरियस गिद्ध 24 दिनों में करीब 3000 किलोमीटर उड़कर उज्बेकिस्तान पहुंच गया है। इस दौरान उसने राजस्थान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सफर तय किया। वन विभाग ने उसकी पूरी यात्रा पर नजर रखी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में जूस और लस्सी की दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। मिलावट की शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। रानी कमलापति स्टेशन के पास बंसल वन बिल्डिंग में एनएसजी ने हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल का आयोजन बीते दिनों किया। आतंकियों से बंदक छुड़ाने और सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल का अभ्यास इस मौके पर किया गया। मानसून से पहले डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर शहर में बीते दिनों रैली, नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को बचाव के उपाय बताए गए। रविन्द्र भवन में आयोजित नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान समर्थ दृष्टि साधना के शिखर पुस्तक का विमोचन किया गया और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 3 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। भोपाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में पेट्रोल 109.70 रुपए और डीजल 95.04 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। भोपाल और इंदौर का मेट्रोपॉलिटन एरिया अब 28,000 वर्ग किलोमीटर तक विकसित किया जाएगा, जिसमें कई जिलों की तहसीलें और हजारों गांव शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने ओबीसी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों चयनित युवाओं को प्रशिक्षण किट का वितरण किया गया। आईपीएस शैलेंद्र सिंह चौहान ने भोपाल में डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि शहर की शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। भोपाल में किरायेदारों, पीजी में रहने वालों और होटल लॉज में ठहरने वालों की जानकारी पुलिस को देना अब जरूरी होगा। पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बीते दिनों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने जयप्रकाश जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित मिले डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किए गए। भोपाल के पास बेतवा नदी के सूखे उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने के अभियान के दौरान एक प्राचीन जल स्रोत मिला है, जिसे पार्वती कुंड नाम दिया गया है। सफाई के बाद इसमें फिर से पानी निकलने लगा। जनगणना 2027 के तहत भोपाल में अब तक 3,60,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। बेहतर काम करने वाले प्रगणकों को सम्मानित भी किया गया। बारिश के मौसम में सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए नगर निगम ने उन्हें रेन किट वितरित करना शुरू किया है। पहले चरण में 105 सफाई मित्रों को किट प्रदान की गई। रविन्द्र भवन में बीते दिनों आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 101 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। भोपाल जिला न्यायालय में बीते दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के मामलों में राहत दी गई और कई विवाद आपसी सहमति से निपटाए गए। बीते दिनों तुलसीनगर स्थित नगर निगम के नए अटल भवन का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया। 43 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में अब नगर निगम के सभी दफ्तर एक ही जगह काम करेंगे। भोपाल से पहली बार बीते दिनों सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा रवाना हुई। मुख्यमंत्री ने रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा में 1100 श्रद्धालु शामिल हुए। प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले बीते दिनों किए। नई जिम्मेदारियां एडीजी से लेकर डीसीपी स्तर तक के अधिकारियों को सौंपी गयी। भोपाल के कुशभाव ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम बीते दिनों घोषित किए गए, जिसके तहत 12वीं में 76% और 10वीं में 73% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस बार भी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट में बाजी मारी। भोपाल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत में आज पहला गीत है फिल्म दीवाना से, कुमार सानू की आवाज में। बोल है समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश, गुड़िया और इनके सभी साथियों ने।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी से उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी के स्वरों में। गीत है समीर का और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहते हैं बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग, गुलाम रोड हरगोविंद नगर नरवेश नवान शहर से सुरेंद्र साहू, अनिता सुरेंद्र संधू, अनिता, रोहित, रितेश, शिका, प्रतीक्षा और इनके साथियों ने।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म जीत से अलका याग्निक और विनोद राठौड़ के स्वरों में। गीत है समीर का और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहा है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज त्रिपुति, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, गुलाब दास मणिकपुरी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश भट्टा, नीलम, नितिन, करण, निहारिका और वंश और इनके साथियों ने।
1: बदलो बदलो।

0: सुनो अब कर्ज।
1: आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत
0: फिल्म
1: एक रिश्ता से,
0: अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वरों में। बोल है समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम रजौरी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और इनका परिवार। इसी गीत की फरमाइश भेजी है फालजी का पंजाब भूषण खेड़ा से विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी, शालनी, देवांशी और समस्त खेड़ा परिवार।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम अनुरोध गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

0: श्रोताओं नमस्कार। एक और नए दिन में नई ऊर्जा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी श्रीला संजय। सखी रोज की तरह आज भी आप सभी व्यस्त होंगे, पर इस व्यस्तता में हम अपना यानी खुद का ख्याल कितना रख पाते हैं, इसका जवाब आप सभी बखूबी जानती हैं, है ना? तो सखियों, आज इस पर चर्चा करेंगे हमारी आज की मेहमान महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती श्वेता वालंबे से। करेंगे साझा गर्मियों में स्वस्थ रहने के कुछ हेल्थ टिप्स। इन सबसे पहले आते हैं आज की बात के विषय पर, जो कि है इंटरनेशनल म्यूजियम डे के अंतर्गत संस्कृति संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। श्रोताओं, आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे है और इस अवसर पर हम सभी अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत को याद करते हैं। म्यूजियम या संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं होते, बल्कि वे हमारी सभ्यता की जीवित पहचान होते हैं। और अगर संस्कृति को संजोने की बात की जाए तो महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देती है। श्रोताओं, एक महिला केवल परिवार ही नहीं संभालती, बल्कि वह अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों की भी सच्ची संरक्षक होती है। एक माँ अपने बच्चों को भाषा, संस्कार, त्योहारों और परंपराओं का ज्ञान देती है। दादी नानी की कहानियां बच्चों को अपने इतिहास और संस्कृति से जोड़ती हैं, और इस प्रकार महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाती हैं। संग्रहालयों में रखी हुई प्राचीन कलाकृतियां, लोक कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र और चित्रकला, इन सबको जीवित रखने में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। सखियों, गांवों और शहरों में आज भी महिलाएं लोकगीत, लोक नृत्य, कढ़ाई बुनाई और पारंपरिक कलाओं को सहेज कर हमारी संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। इतिहास गवाह है सखियों कि जब भी हमारी संस्कृति पर संकट आया है, महिलाओं ने अपनी शक्ति और त्याग से उसे बचाने का कार्य किया है। फिर चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई का साहस हो या सामान्य गृहिणी का अपने संस्कारों को बचाने का प्रयास, हर महिला ने संस्कृति संरक्षण में अमूल्य योगदान दिया है। आज इस आधुनिकता के दौर में जब लोग अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, तब महिलाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वे नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रही है। सोशल मीडिया, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व तक पहुंचा रही है। और अंत में बस यही कहेंगे कि यदि संग्रहालय हमारी संस्कृति की धरोहर है, तो महिलाएं उस धरोहर की आत्मा है। संस्कृति को जीवित रखने में महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। हमें उनके इस योगदान का सम्मान करना चाहिए और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। तो सखियों, ये तो थी हमारी आज की बात के विषय पर छोटी सी जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोतांश, अंतराल के बाद कार्यक्रम में वक्त है मुलाकात का, तो मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से।
2: श्रोता, आज हम मिल रहे हैं महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती श्वेता वालंबे जी से, जिनसे हम जानेंगे पोषण, एनीमिया और महिला स्वास्थ्य इस विषय पर कुछ जानकारियां। स्वागत है श्वेता जी आपका आज के हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम।
2: श्वेता जी, ऐसा देखा गया है कि आज भी समाज में अनेक महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी

0: कठिनाइयों के बीच अपने स्वयं के पोषण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दे पाती हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए किस प्रकार की जागरूकता और सामाजिक पहल आवश्यक है?
1: नमस्कार श्रोताओं को, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। हम सभी महिलाएं अपनी परिवार की जिम्मेदारियों में जब लग जाते हैं तो स्वयं को वह प्राथमिकता नहीं दे पाते जो हम परिवार को देते हैं
2: जी।
1: ये बहुत आवश्यक है कि अगर मैं स्वस्थ हूँ तो ही मेरा परिवार भी स्वस्थ है
2: जी।
1: और इतनी जागरूकता हर महिला में होनी आवश्यक है, या मैं कहूँ होती है लेकिन वो लापरवाही कर जाती है, वो खुद को उतना ज्यादा प्राथमिकता नहीं देती है जितना अपने परिवार को वो देती है। इसके लिए जरूरी है कि उसको सही जानकारी हो कि किस प्रकार वो स्वयं का ध्यान रख सके। इसकी शुरुआत अगर हम अपने चौके से ही करें कि चौके में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं थोड़ी सी भी ले लूंगी तो मेरे स्वास्थ्य को अच्छा रख सकती हूँ, चाहे हम भोजन की बात करें, चाहे किसी प्रकार के पेय पदार्थ की बात करें, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर क्या मेरे शरीर में कोई कमी है, मैं उन लक्षणों को देख पा रही हूँ या नहीं देख पा रही हूँ, या मैं नजरअंदाज कर रही हूँ, तो मैं स्वयं को लेके कितनी जागरूक हूँ कि मेरा कोई हाथ तो नहीं दुख रहा है, ये सिर मेरा क्यों लगातार दुखता है, मैं बहुत लंबे समय तक भूखी क्यों रह रही हूँ, इन सब चीजों पर मुझे जागरूक होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ पीरियड्स के दौरान मेरा कैसा शरीर है या मेरी अवस्था कैसी है, पीरियड में मेरे को कहीं ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कम तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये भी मेरे स्वस्थ होने का एक बहुत ही बड़ा सूचक हो सकता है। फिर मैं मोटी हूँ या मैं स्वस्थ हूँ, ये दोनों ही बातें अलग है। ये मैं अपने ऊपर से इसलिए बोल रही हूँ कि हम स्वयं की जिम्मेदारी ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, कि कहीं मेरा मोटापा को मैं स्वास्थ्य तो नहीं समझ पी कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। क्या जरूरी है कि जो व्यक्ति मोटा है उसका शरीर स्वस्थ होगा, कोई परेशानी हो सकती है। फिर गर्भावस्था के दौरान या बाद में किसी प्रकार की किसी को समस्या तो नहीं हो रही, इस समय भी किसी महिला को स्वयं को लेकर जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ये सोचूं कि कोई और ध्यान देगा तो मैं ही सब पे ध्यान दे रही हूं, तो किसी को इतना टाइम नहीं कि कोई मुझ पे ध्यान दोगा, तो मुझे ही खुद को अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ भ्रांतियां भी हैं हमारे साथ और हम उन भ्रांतियों को अपनी कहना चाहिए एक रिवाज बनाकर जीने लग जाते हैं, हम खुद ही नहीं तोड़ पाते हैं। जैसे ये मैंने एक रिवाज बना लिया कि मैं नहाकर ही खाऊंगी, अब मैं कितने बजे नहा रही हूँ ये तो नहीं पता, या मैं पूजा करके ही खाऊंगी, हो सकता है मुझे पूजा करने में बहुत देर होगी तो मैं 12 बजे खा रही हूँ, उतनी देर में मैंने अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया। अपने प्रति बात करना, जैसे महावारी पे बात करना, कैंसर पे बात करना, स्तन कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, पीसीओडी पे बात करना, या फिर मेरी मानसिक स्थिति कैसी है उस पर भी मुझे बात करना चाहिए। अगर मैं सामाजिक पहल की बात करूं तो सामाजिक पहल की शुरुआत परिवार से ही हो रही है, फिर वहां जहां मैं काम करने जा रही हूँ कार्यस्थल पे, वहां हम कैसी चर्चा करते हैं, या जो बालिका स्कूल जा रही है या कॉलेज में पढ़ रही है वो वहां किस तरह की चर्चा में शामिल हो रही है, वहां का कैसा माहौल है, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक है और कहीं ना कहीं मेरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे असर डालती है। महिलाओं का स्वस्थ रहना किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूं तो ये मेरा स्वार्थ है, अगर मैं स्वस्थ हूं तो मैं पूरे परिवार का ध्यान रखूंगी और ये मेरी सेवा करने का एक तरीका हो सकता है।
0: बिल्कुल सही बातें बताई हैं मैम कि सच में अगर हम अपना ख्याल रखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने परिवार का भी बहुत अच्छी तरह ख्याल रख सकते हैं। यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे कि एनीमिया महिलाओं और किशोरियों में तेजी से बढ़ती एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है, तो आपके अनुसार इसके प्रमुख कारण क्या है और इसे नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी कदम कौन से हो सकते हैं?
1: एनीमिया महिलाओं या किशोरियों में होने वाली एक प्रचलित सी समस्या है, या कमी कहूंगी मैं इसको। अगर हम इसको अपनी जागरूकता रखें तो हम उससे दूर कर सकते हैं। जैसा अभी हमने बात की थी कि एनीमिया एक ऐसा कमी है शरीर में, जो हम कह रहे हैं खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है। अब अगर मेरे शरीर में रक्त की कमी हो गई है तो जो पोषक तत्व है मेरे शरीर तक पहुंच नहीं रहे हैं और मेरे शरीर के अन्य अंग काम नहीं कर रहे हैं, चूंकि वो काम नहीं कर रहे हैं तो मैं शिथिल हो रही हूँ, मैं थक रही हूँ, मेरी सांस फूल रही हूँ, मैं चिड़चिड़ा रही हूँ और मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये मेरे अस्वस्थ होने का एक छोटा सा यहां से शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि भोजन के बाद चाय कॉफी नहीं पीना, ये हम सबको पता है लेकिन हम ये करते नहीं है। ठंड के दिनों में हमने खाना खाया, हो सकता है किन्हीं परिवारों में प्रचलन होता है कि भोजन करके चाय कॉफी पी लेते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि भोजन के एक घंटे पहले और भोजन के एक घंटे बाद तक आप चाय कॉफी का सेवन मत कीजिए। आयरन अगर आपको बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है शरीर में तो आप डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन खून की कमी हमारी नजरों में उतनी बड़ी बीमारी है ही नहीं कि कोई महिला कभी डॉक्टर के पास चली जाए। उसे लगता है कि ठीक हो जाएगी, थोड़े से चक्कर ही तो आ रहे हैं, मुझे अपने मुंह से बोल रही होती है हालांकि कि मैं कमजोर हूँ, मुझे कमजोर ही लग रही है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है। मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव होने से भी महिला के शरीर में खून की कमी हो जाती, क्योंकि ये हर महीने आ रहा है, लेकिन हम इसको लेके भी उतने अवेयर नहीं होते क्योंकि हम इसको भी रूटीन ही बना लेते हैं। अब मैंने ये सोचा नहीं कि पीरियड के दौरान मुझे क्या समस्या हो रही थी, मैंने उन पे ध्यान ही देने की आवश्यकता नहीं समझी। या क्या मैं पीरियड को लेकर कभी डॉक्टर के पास गई हूँ कि लेडी डॉक्टर पास कि मैडम मुझे ये समस्या हो रही है, तो मैं इस पर भी चर्चा नहीं करती हूँ। फिर विटामिन B12 जो हमारे लिए एकदम नया शब्द है, अगर हम ग्रामीण परिवेश में बात करें तो महिला कहेगी मैडम ये क्या नया ले आए आप, फॉलिक एसिड बोलिए, या ऐसे कुछ पेचीदा शब्द है हमारे सामने। लेकिन अगर नियंत्रण की बात करें तो बहुत छोटी सी एक लाइन है कि आप हरी पत्तेदार सब्जी खा लीजिए, बस। इससे ज्यादा अगर मैं जैसे हम कहें तो हमने कहा कि हरी पत्तेदार सब्जियां ले लो, घर में गुड़ चना है, ठंड के मौसम में हम तिल्ली के लड्डू बनाते हैं तो वो तिल्ली खा लीजिए आप, पालक आ रही है पालक खा लीजिए, नहीं कोई बहुत महंगा फल खा पा रहे हैं तो आप घर जो आसानी से उपलब्ध हो रहे वो खा लीजिए, कभी खजूर ले लीजिए,
0: मौसमी फल
1: ले लीजिए जो आप आसानी से। जब हम गांव के परिवेश की बात करते हैं तो हम अक्सर समझाइश देते समय ये ध्यान रखते हैं कि व्यक्ति के पास स्थानीय स्तर पर क्या उपलब्ध है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करके नहीं आ सकते हैं कि मैं बहुत सारा ज्ञान देके आ गई कि आप ये खाओ ये खाओ ये खाओ
0: जी।
1: लेकिन मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि सामने वाले का परिवेश कैसा है, क्या वो ये खरीद पाएगा
0: जी,
1: या फिर सिर्फ सोच रहा है कि मैडम आई और ज्ञान देके चली गई। तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं बात किससे कर रही हूँ, मुझे वहां क्या समझाइश देना है। तो जब हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां तो आप खा ही सकते हैं, खेतों में आप बो सकते हैं, छोटी सी बगिया लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा समस्या है तो सभी गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है, वहां ANM मैडम CHO मैडम आती हैं, आप उनके पास जाकर भी अपनी स्वास्थ्य जांच करवा सकते हैं। फिर जैसे विटामिन सी युक्त तो हमारे पास नींबू और गांव स्तर पर जाम
0: जी
1: आसानी से उपलब्ध होने वाला फल है, हम उसका उपयोग करें, हम आंवला खा सकते हैं। फिर एक और जो महत्वपूर्ण अवस्था है गर्भावस्था, जिसके लिए हमारा विभाग सतत रूप से काम कर रहा है, तो गर्भावस्था का पता लगते से ही आप आंगनवाड़ी जाएं, स्वयं को पंजीकृत कराएं, फॉलिक एसिड की गोलियां, आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली, ये सभी दवाइयां आप आवश्यक रूप से लें। किशोरी बालिकाएं भी अपना स्वास्थ्य जांच जाकर आंगनवाड़ी में करवा सकती हैं, बच्चों के लिए भी इसी तरह की सुविधाएं आंगनवाड़ी में हैं। तो हम जागरूकता से और कुछ जानकारियों के साथ एनीमिया से हम निजात पा सकते हैं।
0: बहुत जरूरी बातें बताई हैं मैम आपने कि किस तरह से हम अपने पास जो चीजें मौजूद होती हैं उन्हीं चीजों से हम इस एनीमिया जैसी एक बीमारी हम कह सकते हैं इसको, इससे हम निजात कैसे पाएं। यहाँ हम जरूर ये बात करना चाहेंगे कि हम चर्चा कर रहे थे मासिक धर्म यानी पीरियड्स के बारे में, तो इस दौरान स्वच्छता और महिला और बेटियों के स्वास्थ्य पर आज भी कई जगह खुलकर चर्चा नहीं हो पाती है। तो इस सामाजिक झिझक को दूर करने में परिवार, स्कूल और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए?
1: ये बहुत ही रोचक विषय है मासिक धर्म
0: जी।
1: आप और मैं दोनों ही उस परिवेश या उस समय से गुजरे हैं जब हम बालिका थे और हमारा पहली बार पीरियड आया था, शायद ना आपको पता होगा उस समय, ना मुझे भी नहीं पता था
0: जी।
1: और जब आया तो एक बहुत बड़ा सा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने लगा हुआ था, क्योंकि हमारी माताओं ने सिर्फ हमें उस समय ये बताया था कि क्या क्या नहीं करना है, और इससे ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी, और एक कपड़ा लाके दे दिया था कि इस कपड़े का उपयोग करना है, कैसे करना है ये भी कोई बहुत ज्यादा इस पे भी चर्चा नहीं हुई थी। तो हमें इस विषय में कोई जागरूकता की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं थी कि कोई बात हो रही है। आज लेकिन हम बात करते हैं, जैसे मैं खुद को देखती हूँ, आज हम महिला बाल विकास में है चूंकि, तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आके महिलाओं से या लड़कियों से अब हम मासिक धर्म पे खुल के चर्चा कर रहे हैं
0: जी।
1: सरकार ने इसमें बहुत अच्छी एक लाई कि पैड का यूज करना, जहां हम पहले कपड़े का यूज कर रहे थे उससे बालिकाओं को या महिलाओं को कैंसर जैसी एक बीमारी हो रही थी, लेकिन जब से पैड आए हैं गांवों में भी महिलाएं या लड़कियां जागरूक हो गई हैं और कहीं ना कहीं कपड़ों का

0: उपयोग कम होना, नहीं तो नहीं कहूंगी
1: जी,
0: लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 70% बालिकाएं या महिलाएं जो है वो अब पैड का उपयोग कर रही हैं।
1: जी,
0: झिझक जो है वो ग्रामीण स्तर पे अभी भी बनी है। जब हम बालिकाओं से बात करते हैं तो उनसे उनके साथ हमको थोड़ा पहले फैमिलियर होना पड़ता है, थोड़ा दोस्ताना व्यवहार करते हैं, तब जाके वो इस विषय पर अपनी बात रख पाती हैं। परिवार, समाज और जब विद्यालय की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि मासिक धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर माँ से अच्छा कोई नहीं बता सकता है।
1: बिल्कुल सही बात,
0: क्योंकि माँ खुद उस दौर से गुजरी है और बालिका होने के नाते हम अपनी माँ की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरी और आपकी भी बेटियां हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी बेटियों को अपनी माँ से और अच्छा बेहतर इस विषय पे समझा पाते हैं। हमारी माँ को अभी भी इसको लेके कुछ वही पुरानी रूढ़िवादिता जरूर है, लेकिन मैं और अगर आप अपनी बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने विचारों में परिवर्तन ला पाए। अब हम उन्हें खुल के बताते हैं कि बेटा पैड का यूज करो, इस दौरान तुम्हें कैसे खाना पीना चाहिए, स्वच्छता की बात करें तो किस तरह अपने प्राइवेट पार्ट्स को स्वच्छ रखना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, कपड़े को धूप में सूखने डालिए अपने अंडरगारमेंट्स को। पहले ऐसा होता था सब छुपा छुपा के डालने का रहता था, तो वो भी एक बहुत बड़ा था कि बच्चियां अपने अंडरगारमेंट्स तक धूप में नहीं डालती थी, उसको भी कहीं छुपा के कोने में डालेंगी, तो हम वो भी समझाते हैं कि आप धूप में जरूर डालें। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक ऐसा स्थान है जहां हम ज्ञान अर्जित करते हैं। ज्ञान इस विषय पे भी हो सकता है क्योंकि ये लड़कियों से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शरीर का परिवर्तन हो रहा है, बच्ची के मानसिक परिवर्तन भी होता है। कुछ बालिकाओं में मूड स्विंग भी देखने को मिलेगा, गुस्सा आता है बहुत, कोई उल्टी की शिकायत करता है, कोई बहुत ज्यादा पेट दर्द की शिकायत करता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बालिका का पहली बार पीरियड स्कूल में ही आ जाए, उसे तो कुछ भी नहीं पता है, तो वहां पर एक ऐसी टीचर हो जिससे बच्चियां मिलजुल कर रहती हो, टीचर थोड़ी व्यवहार उनका प्रेममय हो, तो बच्चियां अपनी इस तरह की समस्या को वहां रख सके और हम उसको हेल्प डेस्क जैसा नाम दे सकते हैं। मैं अक्सर जब भी समझाई देती तो बालिकाओं को ये जरूर कहती थी कि बेटा चाहे स्कूल जाओ या कहीं बाहर भी जाओ तो अपने बैग में एक अतिरिक्त पैड हमेशा रखना चाहिए कि अगर किसी और का आया है तो हम उसकी भी मदद कर सके, और अगर हमारा खुद का पीरियड आया है तो हमको उस समय परेशान ना होना पड़े कि मैं वो पैड ढूंढने अब कहाँ जाऊंगी। स्कूल में भी होता, अब तो स्कूल में खैर पैड बैंक कॉलेजेस में भी हमारे विभाग के द्वारा लगाए गए थे सैनिटरी पैड के वो मशीन्स वगैरह, इनको वेंडिंग मशीन कहा जाता है। समाज बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रांतियां जिसकी हमने अभी आपसे बात की कि मंदिर नहीं जाना है, पानी नहीं छूना है, वहां मत बैठो, यहां मत बैठो, इट्स ओके, आप फॉलो करिए, हम आपके इमोशंस को भी वो नहीं कर रहे, लेकिन इन सब को करते हुए बच्ची को मानसिक रूप से तनाव मत दीजिए कि कहीं ना कहीं उसे ये लगे कि ये हर महीने ये एक नाटक आ जाता है मेरे पीछे और फिर घर में सब लोग मेरे पीछे शुरू हो जाते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना। ये जो डूज एंड डोंट्स हैं ये उस बालिका को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव देते हैं। इस पे हम वो चर्चा करें कि ये तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है। हम ये तो कभी नहीं बताते बच्ची को कि बेटा मासिक धर्म क्यों आया, कि स्वस्थ होने का भी एक ये सूचक है कि तुम स्वस्थ हो इसलिए हर महीने आ रहा, अगर ये ना आए तो चिंता का विषय, सही उम्र में ना आए तो चिंता का विषय, लेकिन हमने तो मासिक धर्म को ही चिंता बना डाला है, उसी को प्रॉब्लम बनाकर प्रस्तुत कर दिया है। जब हम छोटे थे तो हमें लगता था सचमुच ही हर महीने क्यों चला आता है, अब नहीं आता है तो टेंशन हो रही है, तो आप इसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका प्रस्तुतीकरण क्या, ये आप उसको स्वास्थ्य से जोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं या समस्या से जोड़ के। तो मुझे लगता है कि आप अगर इस स्वास्थ्य से जोड़ेंगे कि अच्छा भोजन करे बालिका, इस दौरान बहुत सारा रक्त स्त्राव हुआ है तो वो बहुत अच्छे से भोजन करे, स्वच्छता का ध्यान रखे और वो खुश रहे। अगर उस सोचिए किसी बच्ची का पीरियड आ गया और परीक्षा आ गई, वो बहुत मानसिक टेंशन में होती है, तो उस समय आप उसको कैसे उस चीज से निकाल पाएंगी, तो हमें इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, ना कि उसको समस्या का रूप देना चाहिए।
2: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमने की कि किस तरह से हम पीरियड्स के दौरान अपनी बेटियों को किस तरह से हम उनका मानसिक तौर पर ख्याल रख सकते हैं, और यहाँ हम ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि महिलाओं और बच्चों के बेहतर पोषण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, तो आपके अनुभव में इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव देखने को मिलता है?
0: आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो अन्य सभी विभागों के माध्यम से, जैसे स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए और महिला बाल विकास विभाग, जो सीधे इंसान के साथ काम कर रहा है और इंसान के लिए सबसे

0: महत्वपूर्ण है उसका स्वास्थ्य,
1: जी
0: और इसके लिए जमीनी स्तर पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारा ये प्रयास है कि हर वो प्रत्येक व्यक्ति जिसे इनकी आवश्यकता है हम उन तक पहुंच सके। इसके लिए आंगनवाड़ियां बनाई गई हैं, CHC सेंटर्स हैं, जिनके माध्यम से लोगों को सतत रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो आंगनवाड़ी में मंगलवार के दिन निर्धारित दिवस पे टीकाकरण होता है। यह टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है उस गांव के लिए।
1: अच्छा,
0: इसमें जरूरी नहीं कि कोई गर्भवती ही जा रही है, कोई धात्री ही जा रही है, वो बच्चे वाली माँ ही जा रही है
1: जी।
0: इसमें कोई भी महिला जा सकती है क्योंकि वहां एक ANM बैठी है, वहां एक CHO बैठी है जो आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से मार्गदर्शन जरूर देंगी। महत्वपूर्ण जांचें तो हो ही जाएंगी, छोटी सी जैसे BP जांच लें आपका कि क्या आपका BP ठीक है, आपका HB कितना है, जो हम बार बार अभी एनीमिया और महावारी में बात कर रहे हैं। शुगर, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल, किसी को भी डायबिटीज हो जा रही है। और आयरन, जो अभी हमने बात की कि आयरन की गोली आपको वहां से उपलब्ध हो जाएगी, आपको कैल्शियम की गोली मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर भी मॉनिटरिंग करती है। पोषण एवं स्वास्थ्य की जो समझाइश है वो हम टीकाकरण के दिन समझाइश सत्र के माध्यम से देते हैं। अगर किसी गर्भवती को बहुत ज्यादा खून की कमी है तो उसको खून भी चढ़वाया जाता है। हॉस्पिटल में भी महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए निर्धारित दिवस है, उस दिन जांच होती है। इस तरह से हम एक गर्भवती महिला को और धात्री माता और बच्चों को जानकारी दे रहे हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि इतनी अच्छी बातें और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, और आपने अपना अमूल्य समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे श्रीमती श्वेता वालंबे से की गई चर्चा। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है आपके मनोरंजन का, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत के बाद अब वक्त है हेल्थ टिप्स का। तो श्रोताओं, गर्मियों का मौसम अपने साथ तपती धूप और झुलसाती हवाएं लेकर आता है। ऐसे में अपने सेहत का ध्यान रखना केवल जरूरत नहीं बल्कि अपने शरीर के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। तो चलिए आपसे साझा करते हैं गर्मियों में उपयोगी कुछ हेल्थ टिप्स। सबसे पहले तो पानी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। जी हाँ, दिन भर पर्याप्त पानी पिए ताकि शरीर में ऊर्जा और ताजगी बनी रहे। प्रकृति के ठंडे उपहार अपनाइए, यानी तरबूज, खीरा, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी केवल भोजन नहीं है सखियों, बल्कि गर्मी से राहत देने वाले प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। धूप से खुद को बचाइए। जी हाँ, तेज धूप केवल रंग ही नहीं बल्कि सेहत भी छीन सकती है। बाहर निकलते समय छाता, टोपी, गमछा या दुपट्टा जरूर रखें। याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा है। इसी तरह हल्के और आरामदायक कपड़े पहने। सूती कपड़े शरीर को सुकून देते हैं। जैसे ठंडी हवा मन को राहत देती है, वैसे ही आरामदायक कपड़े शरीर को राहत देते हैं। गर्मी में शरीर जल्दी थक जाता है, तो थोड़ी देर का आराम जरूर लें। साथ ही पूरी नींद शरीर को नई ताकत देती है। और हाँ, कभी कभी आराम भी दवा का काम करती है। बाहर के खाने से दूरी रखें। और याद रखें सखियों, एक छोटी सी लापरवाही आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। साफ और ताजा भोजन ही चुनें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन की असली खुशी है। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही हर सपने की पहली सीढ़ी है। इस गर्मी खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी मुस्कान और आपकी सेहत आपके अपनों के लिए सबसे कीमती है। तो सखियों, ये तो थे कुछ हेल्थ टिप्स जिससे हमें इस झुलसती गर्मी में आराम मिलेगा। तो अब वक्त है, आपको हम बता देते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। तो सखियों, हमारा कल का कार्यक्रम होगा कल सुबह 10:30 बजे। और कल कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे हमारी सखी अलका पांडे के साथ, जो लेकर आएगी कुछ जानकारियां एक और नए विषय पर। मनोरंजन होगा आपके पसंद के गीतों के साथ। तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला जगत कल सुबह 10:30 बजे। और सखियों, चलते चलते एक छोटी सी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो। मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ मिट्टी से बना हो, उसे घमंड और गर्मी किस बात की। जी हाँ सखियों, बस इस सच को अगर हम अपना लें तो हमारा जीवन चिंता मुक्त और सुखमय होगा। बस इन्हीं बातों के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्द मिलने के वादे के साथ अपनी सखी श्रीला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:59 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे अगला प्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: असलम के बोल और लकी अली का संगीत।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।

निगम की आवाज में आपने सुने फैज अनवर के बोल और साजिद वाजिद की धुन, और अब सुनते हैं सोनू निगम की ही आवाज में ये गाना। नुसरत बद्र के बोल हैं सोनू निगम।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मेरे पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अदनान समी और आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना, मूल रियाजुर रहमान सागर के हैं।

शान की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना और यही है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: नियम स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना

0: पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, मैंने प्यार किया फिल्म से। SP बाल सुब्रमण्यम की आवाज है, असद भोपाली के बोल राम लक्ष्मण की तर्ज।

यादों के महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं खुशबू फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने, लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है राहुल देव परमन ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजें थी, रविंद्र रावल के बोल थे, और अब सुनवा रहे हैं आपको ये गाना।

फिल्म लोफर का ही गाना आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: प्यार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनूं।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं वास्तव फिल्म का गाना सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

कुछ झक झक सब बना उठता है। हाँ

0: तो खाते दो, झूठ लगे तो ना कर दो, सच लगे तो हाँ कर दो, झूठ लगे तो ना कर दो, खाते ना
1: देते
0: रहो।

फिल्म पारस का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में वर्मा मलिक के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मजबूर का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता
1: हूँ। ये है फिल्म महल का गाना, आशा भोसले की आवाज में। साथ में आप सुन रहे हैं देवानंद की आवाज।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या है सितारों को झुका सकते हैं आप।

موسم سوہانا ہے، دل کش تو زمانہ ہے، پھر بھی اداسی ہے یہ رات.

आशा भोसले और डैनी की आवाजों में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म काला सोना का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का सादर नमस्कार। और आज का सुरीला सफर है बन रहा कुछ अलग ही ढंग से, क्योंकि आपके संदेशों में बात है आज की और गुजरे हुए कल की। तो अब आपको बता देते हैं आज का टेक्स्ट। जैसे हमारे कुछ श्रोता जो कि फेसबुक पेज पर, जहां पर गीत भी मिलते हैं और मीट भी मिलते हैं, वहां पर

ये टेक्स्ट देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता देते हैं आज की ये इबारत। कई बार कुछ ऐसा होता है कि गुजरा हुआ वक्त चुपके से दबे पांव मन में चला आता है और किसी जादूगर की तरह साकार कर देता है वो बीता हुआ पल। जब कोई मिला या कोई बिछड़ गया, कुछ टूट गया, कुछ छोड़ दिया या कुछ पा लिया, वो पल जहां मन के बावरे पंछी संग रोके नहीं रोकी उमंग, या जहां किनारे पर डूब गई दिल की कश्ती, यादों की उन गलियों में भटकता ही रहे मन, लेकिन सितारे मेहरबान हो तो पुकार लेता है वर्तमान, ओ मितवा आजा रे। इस गली में कहीं खो सकता है आपका आज, जल्दी से आगे बढ़कर थाम लीजिए अपने आज का हाथ, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं, तो चलिए उसी राह पर जिस पर खड़ा है आज अभी यहीं। तो ये है आज की इबारत और इस इबारत को लेकर आपने चुन लिए हैं गीत। भाई गीतों की इस लिस्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है और हमारे कुछ साथियों ने बताया है बहुत सारे गीतों के बारे में। एक श्रोता ने बताया है कई बार यूं भी देखा है गुजरा हुआ जमाना चुपके से दिल दे दे चला जाता हूं किसी की धुन में जादूगर सैया, इस तरह के उन्होंने करीब 15 गीत छांटे हैं। वाह क्या बात है, गीतों के मामले में कितने संपन्न हैं हमारे श्रोताओं की याददाश्त। वाकई इस बात का हमें कई बार ये भी लगता है कि कितने ज्यादा गीतों से जुड़े हुए लगाव है आप सभी को। एक श्रोता का जो संदेश है वो कह रहा है कि उसमें कुछ यूं कहा गया है कि आज की इबारत ने मन के पक्षी को अतीत में ले गया। सही कहा गया है, आप भूगोल बदल सकते हैं इतिहास नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। यह अतीत सुनहरा या कड़वा हो सकता है, मगर वे लम्हे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। बेहतर है बीते अतीत के बुनियाद पर जीवन को बुलंद कर वर्तमान में जीना ही सार्थकता है, क्योंकि वर्तमान ही हकीकत है। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई में छिपे यादों के मोती अक्सर हमारे दिल के आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी हवा का एक झोंका, किसी पुराने पन्ने की खुशबू या रास्ते में मिला कोई जाना पहचाना चेहरा हमें गुजरे जमाने की गलियों में वापस ले जाता है। वो लम्हे जो पीछे छूट गए थे अचानक सामने आकर दिल को एक अनूठे सुकून और भीगी हुई उदासी से भर देते हैं। वाह क्या खूबसूरत बात कही है। तो बताइए कि आज कई बार वो याद जो ताजा हो जाती है किसी ऐसे ही पुराने पन्ने की खुशबू के साथ, या हवा के किसी झोंके के साथ, या किसी जाने पहचाने चेहरे के साथ, कभी बहुत साल पहले गुजरी थी जो बात, वो बात ताजा हो जाती है, तो उस बात के बारे में हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पुरानी यादों या बीते हुए वक्त की खुशनुमा या कठिन परिस्थितियों के पल जब भी स्मृति पटल पर पूर्व दीप्ति बनाने लगते हैं तो मन में एक भावुक संवेदना जागती है। ऐसे में मन का पंछी पुरानी यादों को एक नई उमंग और उम्मीद के साथ फिर से उड़ान भरने लगता है और एक सकारात्मक सोच मन में आती है कि फिर एक बार कोई प्यार से पुकार ले। अपनी सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमय इबारत की इबादत की इबारत से निकले शब्दों में कई बार कुछ ऐसा गुजरा वक्त चुपके से दबे पांव मन आपका आज चला आता किसी जादूगर साकार बीता पल मिला जल्दी गली मितवा आगे बढ़ थाम लीजिए जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गुजरा हुआ जमाना बीता हुआ वक्त और पुरानी यादें किसी जादूगर की तरह चुपके चुपके हमारे वर्तमान में लौट आती हैं। समय और यादों का ये सफर इतना गहरा होता है कि कई बार कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ पुरानी बातें और कुछ मधुर स्मृतियों के गीत अचानक दिल में उतर जाते हैं। भले ही आप दूर हो पर वो पल तो अचानक ही सजीव होकर आपके साथ हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने और उन्हीं स्मृतियों के बारे में हम पूछ रहे हैं, उन्हीं खट्टी मीठी यादों के बारे में आप पूछ रहे हैं हम आज, जो आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले या आज से 10 साल पहले गुजरी हो और आपको आज भी याद करा देती हूं। ये गाना सुनिए और बताइए कि ये किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

हमारे एक श्रोता ने खुशी जाहिर की है कि वाह, मेरी लिस्ट का पहला ही गाना मिल गया। बिल्कुल सही बात। जवाब भी आए हैं बहुत ढेर सारे, ज्यादातर दिनेश ठाकुर या अमोल पालेकर जी की बात हुई है। एक श्रोता ने राजेश खन्ना का भी नाम लिखा है, ये रजनीगंधा फिल्म का गाना है। योगेश के बोल सलील चौधरी का संगीत और गाना बैकग्राउंड में चलता है। दरअसल शुरू ये विद्या सिन्हा के चेहरे से होता है और बाद में फिर दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर भी इस गाने में नजर आते हैं। तो भाई ये जो गाना है कि कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है तो मन तोड़ता है जब वो सीमा रेखा, और कूद जाता है जाके जल्दी से अतीत की गलियों में। ऐसा जब कुछ आपके साथ हुआ हो उस वक्त के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। बताइए हमें, आज से 10, 15 या 20 साल पहले ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आज भी याद करके या तो आप हंस पड़ते हैं या फिर दूसरों को हंसी आ जाती है। संदेश है एक श्रोता का, कहते हैं कि समय किसी के रोके नहीं रुकता, वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, उसको पकड़कर चलने में ही समझदारी है। वक्त के साथ ही लोग मिलते और बिछड़ते हैं। हमारा बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ आज में जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और श्रोता कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमें यह एहसास जरूर दिलाती हैं कि हमने जीवन में कितना कुछ जिया है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें, कुछ बिछड़े रिश्ते, यही सब मिलकर मन एक ऐसी व्यथा पैदा करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। यादें हमारे भीतर चुपचाप सांस लेती रहती हैं, कभी रात की खामोशी में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी अकेलेपन की किसी लंबी शाम में वे फिर दस्तक देती हैं। बहुत सुंदर। एक और श्रोता ने आज शीर्षक से कुछ बात कही है। आज कोई ठहरा हुआ समय नहीं, बल्कि ये वो द्वार है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि जीवन केवल आज में ही धड़कता है। जो व्यक्ति आज में जीता है वो किसी भी कार्य को पूर्ण समग्रता से कर सकने की क्षमता रखता है। यही पूर्णता ही ध्यान यानी मेडिटेशन है। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि अतीत के सबसे मोहक पलों में से एक होता है बीता हुआ समय। समय अपने अंदर कितना कुछ समोए रहता है, किसी अपने का मिलना बिछड़ना, यादों के तिलिस्म के ना जाने कितने दरवाजे हैं, मगर जीवन तब जीवन की तरह खिल उठता है जब कोई अपना हमें पुकार लेता है। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आते हैं, ऐसे में उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, जो है वो बस आज में है, इसी पल में है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक और श्रोता ने बताया है कि सुरीला सफर में कुछ गाने गुजरा हुआ जमाना, वक्त, पल, मितवा, कश्ती आर सच वर्ड्स ऑन विच टूडेज सुरीला सफर विल गो ऑन, द रेस्ट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपकी लिस्ट में इसने आपने जो शब्द चुने हैं, देखिए

पर गाने आ रहे हैं या नहीं, और सोचिए तो कोई गाना आपके ख्याल में आ रहा है या नहीं। लेकिन अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे श्रोताओं ने। मधुबाला पर फिल्माया गया है शीरी फरहाद फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना तन्वीर नकवी के बोल थे और एस मोहिंदर का संगीत था। श्रोताओं ने अपनी कुछ यादें भेजी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे उस समय की रिलीज हुई नई फिल्मों के गाने बहुत ज्यादा पसंद आते थे, पर जो जो समय बीतता गया मुझे ज्यादा पुराने गाने ज्यादा पसंद आने लगे। आज के समय में तो मुझे नए गाने बहुत कम पसंद आते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आजकल किसी छोटे बच्चे को शरारते करते देखती हूँ तो अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है। तब की उनकी शरारतें कभी गुस्सा दिला जाती थी, आज याद कर मन को गुदगुदा जाती हैं। वो वक्त कितना जल्दी गुजर गया जिसे फिर से जीने का मन करता है। काश वो गुजरा हुआ जमाना फिर से आ जाता। बिल्कुल सही बात है, वो पल बीत जाते हैं लेकिन हम उन्हें याद करते रहते हैं। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, फिर भी हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वाकई एक और श्रोता ने आज की इबारत को पढ़कर सुरीले सफर में गुजरे हुए पलों की बातों से संबंधित गीतों को तवज्जो दिया गया है। ऐसा लिखा है, हर इंसान के जीवन में गुजरे हुए पलों की यादें सुखद और दुखद दोनों हो सकती हैं। सबसे ज्यादा बचपन से जुड़ी हर लम्हा और उनकी यादें बहुत कचोटती हैं। काश कोई खोया हुआ बचपन फिर से लौटा दे, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार पुराने सुनहरे पल हमें अपने उसे जोड़ते हैं। पुराने पलों की उन बातें जो अच्छी हैं उनके लिए कृतज्ञता महसूस करें, लेकिन जो पल बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। और इन्होंने कुछ गानों के नाम भी दिए हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। अपनी यादों को हमारे साथ साझा करने के साथ साथ एक बात और, आज विश्व संग्रहालय दिवस है तो बताइए कि संग्रहालय में ज्यादातर गुजरे जमाने की इतिहास की उन अनमोल यादों को संजोया जाता है जो बहुत खास होती है। कभी आपने कोई संग्रहालय देखा है या बचपन में कभी गए हो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं।

0: सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और भाई संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपना विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो निश्चल हंसी, उफ क्या बात है। तो भाई देखिए ना, किसी की हंसी, किसी की बात या किसी का टोकना भी याद रह जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, जो बीत गया सो रीत गया, जो बच रहा वो यही पल है जिसका इस्तेमाल हम सब वीबीएस के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, विविध भारती के साथ आपका ये पल कैसा गुजर रहा है इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारी श्रोताओं ने जो भेजे हैं हमें गानों के, बताइए कि ये पल, ये जो गाने हैं, ये आपके लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। एक श्रोता ने कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके चुपके चल रही पुरवैया और जादूगर जैसे बहुत सारे गानों का अपना लिस्ट बना के भेजी है। एक श्रोता ने गुजरा हुआ जमाना वापस तो नहीं आ सकता, ये कहते हुए अपना संदेश आगे लिखते हैं कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं। मसूरी के कैंटी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का वो दृश्य सामने आ जाता है, जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और दो तीन साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभयारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में दो दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में ली गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने संजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था। और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम।
1: अरे चुपके से दिल दे दे,
0: नहीं ते
1: शोर मचे।

राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया कि मैसूर का किला देखा, राजा का पुराना राजमहल है। विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एक श्रोता बता रहे हैं कि 1989 में मुंबई के संग्रहालय पुरानी वस्तुओं, यादगार चीजें, धरोहर, विरासत, ये म्यूजियम उन्होंने दो बार देखा है। म्यूजियम में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है, या जब भी देखा किस चीज को के सामने आप बड़ी, किस जो शोकेस में लगी रहती हैं तमाम चीजें, उनमें से किस शोकेस के सामने आप काफी देर तक खड़े रहे, अगर याद हो तो जरूर बताएं। और हाँ, तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई, कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तक उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही। श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने, मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफर की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार डोलने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है, इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें हंसी खुशी जिंदगी बिता दो। वक्त का पहिया न कभी रुकता है न रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे VBS के सुरीला सफर में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफर सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे, यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने, वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है, और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है हमें जल्दी से बताइए। और हाँ, संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी जरूर बताइएगा।

इस गीत का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं, क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको? उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी श्रोता ने मोनीश जी का नाम भी, यानी मोनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा जिला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूं, अपने भाई बहनों के साथ वाले फोटो और अपने बच्चों का बचपन का फोटो, परिवार का फोटो सभी। जब भी फुर्सत में रहती हूं जरूर पलट कर देखती हूं और कुछ उसमें से फोटो निकालकर उनसे संबंधित लोगों को शेयर भी करती हूं। वाह, ये तो पुरानी यादें ताजा करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि तस्वीरें खींचने और खिंचवाने का जबरदस्त शौक है और उनका संग्रह करना भी, न सिर्फ एल्बम में बल्कि मोबाइल लैपटॉप सबके मेमोरी में भी संभाल कर रखती हूं और गाहे बगाहे उन्हें पलट कर देखने का भी शौक है। परिवार में सबके शादी ब्याह की तस्वीरें अपने पास रखना अच्छा लगता है वाकई, और जब देखते हैं ना वो तस्वीरें तो फिर याद आ जाती हैं वो सभी बातें और वो अच्छा हल्का फुल्का वक्त जो गुजरा था उस वक्त। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी की लड़की जो मेरी बहन थी, सन 1971 में उसकी शादी में हमारे सारे परिवार का एक साथ खींचा गया ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा फोटो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय मेरी उम्र 1 साल की थी और मैं अपने पापा की गोद में नजर आ रहा हूं। उस फोटो की हमने तस्वीर में बनाकर रखा है, मतलब शायद फ्रेम कराकर रखा है आपने। वाकई ये तस्वीरें तो अनमोल होती हैं। एक और श्रोता ने साझा की है एक तस्वीर की बात, मेरी बेटी की तस्वीर जिसका एल्बम बार बार देखता हूँ, कितनी मासूम मुस्कुराती है, जो 36 साल की हो गई मगर मुझे बच्ची ही लगती है। सच, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत यादों के एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहां क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों ना हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया

वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा। वक्त को पहचानो, अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही बिताना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहते हुए। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।

अमरदीप फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत। याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने, छोड़ दे सारी दुनिया सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नजदीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहां गया था, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले फिल्म यूनिट वहां से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदन कानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है, और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लैनेटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफर में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है।

जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाजा खटखटाती है, उसकी हंसी, उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं। मगर अब न कोई गिला है, न किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं, याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे साथियों ने। हवस फिल्म का ये गाना संगीत उषा खन्ना का। और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहाँ गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाह कर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो, ठीक है, चलिए, आपने छुपते छुपाते बात कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता, जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है, बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर

बुढ़ापे के तजुर्बे तक ये सफर इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज हवाएं, कौन वक्त की धूप हो या तेज हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहाँ, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता जरूर है, लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है, इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है, सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है। परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभिप्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है।

0: का रिश्ता जोड़ने वाले,
1: उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले, अपनी नजर में दीवाने पल दो पल।
2: वाकई दुनिया फानी है और कुछ ही पलों का साथ रहता है सबका। हमारा आपका साथ भी अब शायद कुछ ही पलों का है और अगले गीत का शायद हम आपको थोड़ा सा हिस्सा ही सुनवा सके। जवाब बिल्कुल सही भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। द बर्निंग ट्रेन फिल्म में गाना ट्रेन में फिल्माया गया, जितेंद्र नीतू सिंह आशा सचदेव पर, बिल्कुल सही जवाब। और एक याद ताजा की है प्रेम की। आठवीं कक्षा में पढ़ते अधकचरे प्रेम की याद बहुत बात समझ पाए। मैं कक्षा में आगे बैठता तो एक 14 साल की लड़की बार बार हमसे मदद मांगती, ये सवाल बताओ, ये ट्रांसलेशन बताओ। मेरी आधी कुर्सी पर बैठ जाती, मैं उसकी कॉपी पर जवाब लिखकर डांट देता था। बाद में एक एक्सीडेंट में घायल वो बहुत दिनों की पीड़ा के बाद गुजर गई। उसकी सहेली ने बताया था वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उफ उफ उफ, ये जो जानकारी बाद में होती है ये सच में दिल तोड़ देती है। एक और श्रोता ने अपनी 1990 में हुई शादी की जो पोस्टकार्ड साइज के 100 फोटो याद के लिए अभी भी सुरक्षित रखे हैं, क्या बात है। ऐसी यादें तो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बड़े दिनों तक गुदगुदाती रहती हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि वर्तमान के महत्व के सुंदर भावों में व्यक्त करती है आज की इबारत। स्मृति कभी खुशियां देती है तो कभी बिछड़ने और टूटने का दर्द याद दिलाती है। मन अक्सर यादों की गलियों में भटक जाता है, लेकिन जीवन हमें यह संदेश देता है कि बीते कल में खोने के बजाय आज को संभालना जरूरी है। समय की कभी रुकता नहीं, इसलिए वर्तमान का हाथ थाम कर जीवन को जीना ही आज का सबसे बड़ा सच है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। वैसे समय में कल आज और आज कल में बदल जाएगा और जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जो समय तेरा था वो तेरा होके तेरा न रह जाएगा। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी बात पर ये गीत सुनिए और बताइए कि आवाजें किन की हैं। साथ ही चलते चलते फिल्म का नाम भी बता दीजिए।

और हम पुकार ही रहे थे कि जवाब आ गया। फिल्म परिणय का गाना है ये, आवाजें मन्ना डे और वाणी जयराम की हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म। तो सुरीला सफर के इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी परिवार पर। परिवार मानव जीवन की पहली पाठशाला होती है। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि प्रेम, संस्कार, सुरक्षा और अपनापन का सुंदर संगम होता है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता से हमें अनुशासन, त्याग और मेहनत का पाठ मिलता है, तो वहीं दादा दादी, नाना नानी हमें अपने अनुभवों से सही मार्ग दिखाते हैं। परिवार के बीच रहकर व्यक्ति सहयोग, सहनशीलता, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण सीखते हैं। हर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो माला के धागे की तरह पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन, दादा दादी या माता पिता होते हैं। उस धागे की मजबूती पर पूरे परिवार की एकता टिकी होती है, जिनके बदौलत पूरा परिवार एकजुट, एक साथ होता है।

आज के आधुनिक युग में भले ही लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन मानसिक शांति और सच्चा सुख केवल परिवार से ही मिलता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, उस वक्त हमारा परिवार एकजुट होकर हमारा सहारा बन जाता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें परिवार का साथ मिलता है। एक अच्छा परिवार समाज की नींव होता है। यदि परिवार में एकता होगी तो ये परिवार समाज में अच्छा उदाहरण बन जाता है। परिवार की वजह से बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है, जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। कुछ खास अवसर पर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, गीत संगीत की महफिल जमती है, तब वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते।

0: ला ला ला ला।
1: परिवार जीवन का वो अनमोल खजाना है जिसकी कीमत धन दौलत से नहीं आकी जा सकती। ये वो छाया है जहाँ मनुष्य हर पीड़ा को भूल जाता है। ये वो आश्रय है जहाँ आंसू भी मुस्कान बन जाते हैं। पर आजकल

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। ये दौरान नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। पेश है एक रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और पांच नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, ऑप्टिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता बोलबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। श्री शाह आज जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में शहीदों के परिजनों, सुरक्षा बलों के जवानों, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों और विभिन्न स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। शाम को वे बस्तर के संघ लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले जम्मू कश्मीर में सेना ने रामबन जिले में ग्राम रक्षा समूहों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य स्थानीय सुरक्षा बढ़ाना, तैयारियों में सुधार करना और तीर्थ यात्रा मार्ग पर आने वाले निवासियों के साथ समन्वय स्थापित करना था। प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। झाबुआ जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से धूप में निकलते समय सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की भी अपील की है। प्रदेश में पेपरलेस कार्य संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागरिकों को एमपीई सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप पर सरकार के 56 विभागों की 1700 सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राज्य में

0: वायरस एनसीबी की स्थापना हो चुकी है। इस नवाचार को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिल चुका है। भोपाल में देश की पहली साइबर पंजीयन कार्यालय की शुरुआत की गई है। प्रदेश में ई जीरो एफआईआर का भी शुभारंभ किया गया है। मंत्रिपरिषद की कार्यवाही पूर्णतः पेपरलेस हो चुकी है, जिससे न केवल समय की बचत हुई है बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ी है। प्रदेश में सुशासन के साथ ग्रीन गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश लीग 2026 का आयोजन 3 जून से इंदौर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 10 और महिला वर्ग की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। पुरुष वर्ग के टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 3 जून को होलकर स्टेडियम में शाम 7:30 बजे ग्वालियर चीतास और उज्जैन फॉल्कन्स के बीच खेला जाएगा। महिला वर्ग की प्रतियोगिता 4 जून से शुरू होगी, जहां पहले मुकाबले में चंबल घड़ियाल्स का सामना ग्वालियर शेरवीर से होगा। एमपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 26 जून को शाम 7:30 बजे इंदौर के होलकर स्टेडियम में आयोजित होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यावरणविद प्रखर चिंतक पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के विकासखंड केसला में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जबलपुर जिले में कुंडम विकासखंड जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा करने वाला पहला जनगणना विकासखंड बन गया है। आगरमालवा में किसानों को ई टोकन प्रणाली के माध्यम से सरल सुगम पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। सतना जिले में पुरुषोत्तम मास के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली

0: उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए

0: आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ मन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आपने ट्यून किया है देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गीत हलाकू फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानियां फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की ये खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

0: दिल लेकर मीठा से गम का ये तोहफा देने वाला गीत आपने सुना फागुन फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में कमर जलाल आबादी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं नई दिल्ली फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज है, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आपको मेरे दिल में आ गए। अफसोस है, अफसोस

0: ही सही, ये गम ही सही, आपसे हम कुछ तो पा गए, मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए।
1: आइए सदाबहार नगमे का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी की धुन, फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

जीवन की वीणा पर बसता रहे यूं ही मीठा मीठा प्राणों का राग और जीवन में छाई रहे बहार। इसी संदेश के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं।

0: सखी सहेली सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली है।
0: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
1: बिल्कुल।
0: नमस्कार मंजरी का भी।
1: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में हमारी जो सखिया हमें सखा भाई सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग
0: मुद्दत हो गई।

0: कई जमाने गुजर गए, आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देखकर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
1: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
0: भाई खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
1: क्या बात है?
0: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट
1: हाय
0: और छेना दही बड़ा।
1: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
0: पहले ही कर दिया। मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी आपने बोला था मुझे याद है। तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजू जी कोई चीज मुझे एक दे देंगे तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएगी पिलाने खिलाने की। तो चलिए ये तो हो गई बातें हमारे व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
1: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं।
0: हाँ जी।
1: और तो, आज एक खास दिन भी है
0: जी।
1: खास एक क्यों, दो खास दिन है। हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
0: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कथा सुधा लेकर हम आए हैं। तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
1: बड़ी मजेदार कहानी है।
0: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे।
1: हाँ।
0: तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर के। लेकिन उससे पहले राजुल जी क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
1: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही है तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और भाई तुमने शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी,
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की, जुदा ना होने की, और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल।

0: तेरे मेरे सपने फिल्म का किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और भाई तुमने शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी,
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की, जुदा ना होने की, और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल। तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
3: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया, मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
4: देहात की बकरी है, यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
3: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले, और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला,
5: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता हूं।
3: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
5: चलिए मैं रख देता हूँ।
3: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली, उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गठ्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
2: सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
3: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रें चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक न था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिन

चरिया समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटगिरीदार मैने का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दे को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं? बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था, न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज? 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी, उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती? और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांधकर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। लाहौल विला कुवत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेच दर पेच ऐठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुर जाते थे और जी जल रहा था वो अलग। ये तरकीब और भी तकलीफ दे साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदी है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो
इतना नाजुक दिमाग क्यों बने और फिर

0: तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा? सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं? अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा, यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं, सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
1: कौन कौन है, कौन है रे, वे कहां से पत्तियां तोड़े लाता है, कौन है?
0: मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी

0: लानतों की रूह कानों में ले जा रही थी। बीवी ने पूछा,
1: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए, जीना मुहाल किए देती है ये। घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
0: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
1: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
0: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले, कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
2: हुजूर, 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
2: मरकही है क्या बाबूजी?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
2: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
2: दूध आपके घर पहुँच जाया करेगा बाबूजी।
0: तुम्हारी मेहरबानी।
2: कल से दूध पहुँचा दिया करूँगा बाबूजी।
0: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रख कर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दोगुना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मन मुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
1: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत।
1: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
1: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
0: चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
2: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: देवी जी ने कहा,
1: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
0: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन

0: लीजिए, उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गडरिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
2: मंजरी देखिए, एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए, कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
3: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर से
0: बड़
1: स्वागत है।
0: जी और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है।
0: जी, और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है
0: जी
1: एचआईवी, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा
0: जी
1: से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर एचआईवी की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही एचआईवी एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले इस बात की कोशिश करता है, और
0: बिल्कुल
1: स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके एचआईवी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल
0: बिल्कुल
1: देता है।
0: जी, और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं, तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारियां।
0: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किम खाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, तो ये सब देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, वजनदार चीजें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब वजन वाली, कैसे वो लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं, वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो है वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित है, फिर भी हम उस शीशे पर बार बार हाथ लगाते हैं,
1: सब नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक डोरी लगी जिससे कि बाधा रहे, ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब पुराने अच्छा बहुत समय से संजो कर रखा गया है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: सही बात है, और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजू जी, उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स।
0: कई संग्रहालयों में शोज भी होते हैं कि लाइट शोज होते हैं, या कोई ड्रामा होता है, या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा।
1: करीब पहुंच जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं, है ना।
0: तो चलिए, हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के।
0: गीत के

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं। पहले स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं। बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देशी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मछली, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी, थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए।

0: अरे होने तक तले निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख दे। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दे। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल ले, ज्यादा देर तक नहीं रखे नहीं
1: जी
0: तो वो फट जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: और अब उन्हें दही में डाले, ऊपर से इमली, चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डाले। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा। और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं,
1: क्या बात
0: चाहे
1: है।
0: तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
1: बिल्कुल आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गांव के गरड़िया अपनी बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुपकर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: मोबाइल शरारतें
1: कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट
1: होती है कि या खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए।

0: मोबाइल चलाने से।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसर्जन।
0: और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है। वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है। साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
1: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी। अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
0: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहां तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती है। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
1: एक डोर में बांधे रहता था।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहां डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे।
1: हाँ, लेकिन
0: टाइम नहीं लगा रहेगा।
1: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही हैं और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन लेते हैं।

भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए। तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया।

0: जैदिल,
1: बिल्कुल
0: एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ, ये बात तो होती है ना कि सोते समय भी कोई देख रहा है, जबकि सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूरी बरतना अच्छा रहता है।
1: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिए मोबाइल, मेज पे रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहुओं और बेटों की तू मैं कभी न कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा के मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूरी रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफी चीजों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है, लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल, और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगे आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूंगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत जरूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना जरूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज का जो एक्टिविटीज है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में जरूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं?
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताऊंगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
0: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं, और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है, दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धान्य जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
0: जिसमें आम भाषा में या गांव में कहीं इसको कठोर कहा जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धान्य जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है, ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे बताए, दो चीजें साथ में ले ले तो ये कम्प्लीट हो जाता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
0: अच्छा,
1: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं, या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कम्प्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं। तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेज, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
0: अच्छा,
1: तो पहला अगर मैं देखूं तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धान्या है जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है
0: अनाज के साथ।
1: बिल्कुल
0: जी जी।
1: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है जो हमारा अंडा चिकन मच्छी ये सारा आ जाता है, ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं, भले दूध और इसकी जो
0: सिमिलरिटी है,
1: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
1: हम नहीं बदलेंगे गोलमाल अगेन से।
0: हम सुनवा

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले, हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की जहां तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40 वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का जमाना है और ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले, तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा। डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध वैसे दूध वाली चीजें ले, तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब आप दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है, तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज घर पे ही बना सकते हैं, और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज्यादा बेहतर बन जाता है, उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है, तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसे, उसके लिए सुना ये भी जाता है, कई बार ये मिथ है या सच है, कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पर जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन नुकसान करता है,
0: वो कौन सी?
1: जैसे किडनी के डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
0: बतौर एक आहार विशेषज्ञ, आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
1: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब

0: होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है. जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती है जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है. पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको. जब तक तो वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज परहेज नहीं करनी है,
1: प्रोटीन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल ले सकते हैं. और जरूरी है वो ले ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है तो उनको इंश्योर करना है कि जितना जरूरी है वो उतना प्रोटीन खाए. जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज्यादा नुकसान होगा.
1: जी जी
0: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे. इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं
1: एक
0: कि
1: मिनट होता है,
0: बीज
1: बैंगन
0: वाले,
1: बंद कर दीजिए,
0: हाँ बीज
1: टमाटर
0: वाली
1: बंद कर
0: चीजें,
1: दीजिए।
0: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है. तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है. क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है.
1: जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है.
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए,
0: ये वादा रहा इस मूवी से, ये वादा रहा
1: टाइटल
0: टाइटल
1: सॉन्ग
0: सॉन्ग.
1: सुनना है आपको।
0: जी बिल्कुल,
1: हाँ, ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
0: राइट.
1: हम सुनवा रहे हैं।

0: साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो।
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि इतना सारा पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के अब्सॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
0: हैवी हो जाएगा,
1: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक ग्लास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज्यादा

0: आसानी से यूज कर पाएगा, शरीर को बचाने के लिए समय मिल जाता है और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके होती है।
1: जी जी जी तो इसका मतलब ये है प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
0: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
1: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें, तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
0: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीजें खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली, तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना।
1: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में है, इसका डिटेल बताइए आप।
0: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए, अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है, पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी जरूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है, तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहां पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है, कि जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
1: सीरम क्रिएटिनिन,
0: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहां पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया

0: जा सकता है।
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
0: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से। आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो। आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है। आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है। आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
1: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और अब कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखे खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए।

0: जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन आप
1: ग्रहण
0: कर रहे
1: करना
0: हो।
1: है, बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहत नामक कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल
1: फिल्म
0: मूवी
1: से
0: से।
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: सब गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन्स है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमजोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या
1: जिस
0: धुंधलापन।
1: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोलबल सोर्सेस है, तो वो शरीर में

0: स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें
1: हाँ
0: मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए के फॉर्म में,
1: जी जी
0: राइट। दूसरा विटामिन जो बहुत जरूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है,
1: इसका
0: और
1: क्या काम होता है?
0: ये जरूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि स्किन त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज बन जाती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
1: जी
0: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है, यानी शाकाहारी सोर्सेस है,
1: जी
0: ये मेजर सोर्सेस है। इसके अलावा भी काफी सारे हैं बट ये तो ज्यादा जरूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इंप्रूव करता है।
1: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
0: जी, तो और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है।
1: जी
0: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है, जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
1: नींबू
0: हैं,
1: है।
0: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची,
1: ओहो,
0: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी
1: हरी
0: होता है,
1: मिर्च।
0: हरी मिर्च में। तो ये चीजें हैं हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
1: जी। और देखिए, आहार जो आपने बताया कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
0: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए,
1: अच्छा
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं होता है। और रही बात फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे या हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा रहे। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीजन से या कारण से जरूरत से ज्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्जी रोटेशन पे रखो, जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
0: इश्क भुलावा, हंसी तो फंसी, पिक्चर से।

0: चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट है, विटामिन्स इम्पॉर्टेंट है, सोर्सेज इम्पॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की जरूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीजों में एक चीज रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीजें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी जरूरी है। आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया, या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया, या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो, बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीजें चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व तो बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती, वो सिर्फ एहसास से बयां हो तो बहुत खूबसूरत बन जाती है। जिंदगी को संवारती है मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बतों की इतनी कहानियां हैं दुनिया में जितने आसमान में तारे। ऐसी मोहब्बतों का रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है और मंजिल किसी छाया की तरह दूर सरकती चली जाती है।

रास्तों के ऊबड़ खाबड़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन रास्तों से हट जाएं। एक तरफा मोहब्बत में पड़ने वाले ही जानते हैं कितनी खरोचों और कितने जख्मों से भरा होता है मोहब्बत का रास्ता। संग दिल दुनिया सवाल उठाती है, तंज करती है, रास्ते में

मुश्किलें खड़ी करते हैं, पर लोग हटते नहीं अपने रास्तों से। वो तो बस तमाम उदासियों और तमाम मासूम के बावजूद बढ़ते चले जाते हैं। उनकी मुस्कानों के पीछे होती हैं तरह तरह की रुसवाइयां।

जब निगाह में तुम ही थे, जब दुनिया में हमारे लिए सिर्फ तुम ही थे, जब हमने तुम्हारे सिवा और तुम्हारे पार कुछ सोचा ही नहीं, तो अब भी नहीं सोचेंगे। आज भले निगाहों में धुंध छाई हो और सूझता न हो कुछ, पर हमारी दुनिया तो तुमसे ही रोशन रही है, आगे भी रहेगी रोशन। कैसे मिटाया जा सकता है दिल पर लिखा तुम्हारा सुनहरा नाम।

अच्छा है गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी आए।

होता है कि अनायास जुबां पर तुम्हारा नाम आ जाता है। यूं भी होता है कि कोई भूली बिसरी याद तैर आती है मन के आसमान पर। अचानक ही आई तुम्हारी ये याद किसी जुगनू की चमक जैसी होती है। हमने कहा ना कि दिल पर लिखा तुम्हारा नाम मिटाया नहीं जा सकता। दिल तो बस तुम्हें पुकारता है हर पल हर

साथ के पल बीत जाते हैं जल्दी। कहते हैं कि खुशियां तेजी से चली जाती हैं, एक तरफा इश्क की राहों पर बहार आती ही नहीं, आए भी तो थोड़ी देर को आती है और फिर चली जाती है। ऐसा ही था वो दौर जब अचानक खिलने लगे थे फूल, जब अचानक गुनगुनाने लगा था वो, और जब अचानक सब कुछ खुशनुमा सा हो गया था। यूं जैसे बहार आई और बस ठहर गई, पर हर बहार को एक दिन बीत जाना होता है।

आसमान पर चमक रहे हैं तारे, तारों की झिलमिल रोशनी अच्छी लगती है, लेकिन ये तारे मिलकर अचानक बनाते हैं एक चेहरा। आसमान पर चमकता वो चेहरा दिल में बेचैनियां पैदा करता है और फिर कुछ नहीं सोचता। ऐसे खामोश, ऐसे उदास दौर में दिल कुछ कहना चाहता है तुमसे, पर कहता नहीं है। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, वो बिना कहे बस पहुंचा दी जाती हैं तुम तक।

ਹਮਰਾਹੀ। आज का चाहे गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

آگاهی. آج کا چاہے گیت اتنا ہی. اجازت دیجیے یونس خان کو. نمسکار.

0: सुनेंगे कुछ ही पलों की बात।
1: व्यक्तित्व विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय की हमारे पहले अंक आज की बात में। इसके बाद जानेंगे युवाओं के बीच जीवन में अच्छी हैंडराइटिंग का महत्व। शिक्षिका पूनम राजपूत से इनसे मिली अंक में और अंतिम लेकिन खास अंक साइबर जगत में चर्चा होगी डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचे पर। साथ ही हमारी चर्चाओं को और खास बनाने के लिए सुनवाएंगे आपको फिल्मी गीत, क्योंकि संगीत के साथ हर चीज का मजा दुगना हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के पहले अंक की ओर। दोस्तों, हर साल 18 मई यानी आज के दिन को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के बारे में जागरूक करना होता है। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं को रखने की जगह नहीं होते, बल्कि वे हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और ज्ञान को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा माध्यम होते हैं। जब हम किसी संग्रहालय में जाते हैं तो वहाँ की हर वस्तु हमें कोई ना कोई कहानी सुनाती है। कभी किसी राजा की वीरता की कहानी, कभी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की कहानी और कभी हमारी पुरानी संस्कृति की झलक। दोस्तों, आज की तेज भागती जिंदगी में लोग अपने इतिहास को भूलते जा रहे। बच्चों और युवाओं का ज्यादातर समय मोबाइल और सोशल मीडिया में बीत जाता है। ऐसे समय में संग्रहालय हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं। जब कोई बच्चा किसी पुराने सिक्के, तलवार, मूर्ति या ऐतिहासिक चित्र को देखता है तो उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर ये चीज किस समय की है और इनका महत्व क्या है। यही जिज्ञासा ज्ञान में बदलती है। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है और यहाँ की संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। हमारे देश में अलग अलग राज्यों के संग्रहालय वहाँ की विशेष परंपराओं और कला को दिखाते हैं। भोपाल का जनजातीय संग्रहालय आदिवासी संस्कृति को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। वहीं दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय भारत की ऐतिहासिक धरोहर को संभाल कर रखे हुए है। राजस्थान के संग्रहालयों में राजपूताना शान देखने को मिलती है तो दक्षिण भारत के संग्रहालयों में प्राचीन मंदिर कला की झलक। दोस्तों, संग्रहालय हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और रचनात्मक थे। आज हम जिन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं उनकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। आजकल कई लोग घूमने के लिए बड़े बड़े शहर या विदेशों में जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपने आसपास के संग्रहालयों को देखने का समय नहीं निकाल पाते। जबकि एक संग्रहालय की यात्रा हमें मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी देती है। वहां जाकर हमें किताबों में पढ़ी चीजें वास्तविक रूप में देखने को मिलती है। इसीलिए स्कूल और कॉलेजों में समय समय पर संग्रहालय भ्रमण करवाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आधुनिक तकनीक की मदद से अब कई संग्रहालय डिजिटल भी हो गए हैं। लोग घर बैठे ऑनलाइन वर्चुअल टूर के जरिए संग्रहालय देख सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो दूर जा नहीं सकते, यात्रा कर नहीं सकते। दोस्तों, संग्रहालय हमें अपने देश और संस्कृति पर गर्व करना सिखाते हैं। अगर आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास को जानेगी नहीं तो वे अपनी पहचान कैसे समझेगी। इसीलिए हर युवा का यह कर्तव्य है कि वह अपने इतिहास, संस्कृति के बारे में जाने और दूसरों को भी प्रेरित करें।

तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आप भी एक संकल्प लीजिए कि साल में कम से कम एक बार किसी संग्रहालय की यात्रा जरूर करें और अपने परिवार तथा दोस्तों को भी वहां ले जाएं। और दोस्तों, इतिहास और संस्कृति की इस खूबसूरत चर्चा के बाद अब वक्त हो गया है एक प्यारे से गीत का।

0: दोस्तों, इस अंतराल के बाद अब बारी है इनसे मिली अंक की, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है पूनम राजपूत जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे युवाओं के जीवन में हैंडराइटिंग का प्रभाव पर। तो पूनम जी, कार्यक्रम युवानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुस्कान जी।
0: पूनम जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ बताइए।
1: नमस्कार, मेरा नाम पूनम राजपूत है और मैं एक शिक्षिका हूँ।
0: जी मैम, अच्छी हैंडराइटिंग वास्तव में क्या होती है? क्या केवल सुंदर अक्षर लिखना ही अच्छी हैंडराइटिंग कहलाता है?
1: नहीं, केवल सुंदर अक्षर बनाना ही अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है। अच्छी हैंडराइटिंग वह होती है जो साफ, संतुलित और आसानी से समझ आने वाली हो। अक्षरों का आकार सही हो, शब्दों के बीच उचित दूरी हो और पूरी लिखावट व्यवस्थित दिखाई दे। कई बार बहुत ज्यादा सजावट वाली लिखावट पढ़ने में कठिन हो जाती है, इसलिए सुंदरता के साथ स्पष्टता भी जरूरी है।
0: जी, आपको क्या लगता है, अच्छी हैंडराइटिंग किसी छात्र के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल। जब किसी छात्र की लिखावट साफ और सुंदर होती है तो उसे अपनी कॉपी दिखाने में झिझक नहीं होती। वह अपने काम को लेकर गर्व महसूस करता है। इसके विपरीत, यदि लिखावट बहुत खराब हो तो कई बच्चे खुद को कम आत्मविश्वासी महसूस करने लगते हैं। इसलिए अच्छी लिखावट मानसिक रूप से भी सकारात्मक प्रभाव डालती है।
0: मैम, ऐसा माना जाता है कि एग्जाम में अच्छी हैंडराइटिंग मतलब अच्छे मार्क्स, क्या ये सच बात है?
1: जी हाँ मुस्कान जी, काफी हद तक यदि उत्तर सही हो लेकिन लिखावट अस्पष्ट हो तो परीक्षक को समझने में कठिनाई होती है। जबकि साफ सुथरी लिखावट और व्यवस्थित प्रस्तुति उत्तर को प्रभावशाली बनाती है। इससे परीक्षक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कई बार अच्छे अंक मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है।
0: जी मैडम, क्या लिखावट व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी दर्शाती है?
1: काफी हद तक हाँ, जो व्यक्ति धैर्य और संतुलन के साथ लिखता है उसकी सोच और कार्यशैली भी अक्सर व्यवस्थित होती है। साफ लिखावट अनुशासन और एकाग्रता को दर्शाती है। हालांकि केवल लिखावट देखकर किसी को पूरी तरह समझना सही नहीं होगा, लेकिन यह व्यक्ति के व्यवहार की एक झलक जरूर देती है।
0: जी मैम, आपने सही कहा, छोटी छोटी आदतें ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को खास बनाती है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि बच्चों और युवाओं में हाथ से लिखने की आदत कम होती जा रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है?
1: दरअसल आज का युवा अधिकतर समय मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पर बिताता है। हर काम टाइपिंग से होने लगा है, इसलिए हाथ से लिखने का अभ्यास कम हो गया है। जब अभ्यास कम होगा तो लिखावट और स्पीड दोनों ही प्रभावित होंगी। इसलिए जरूरी है कि बच्चे रोज थोड़ा समय हाथ से लिखने के लिए जरूर निकालें।
0: जी हाँ मैम, सही कहा आपने, तकनीक का उपयोग जरूरी है लेकिन अच्छी आदतों को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। मैम, क्या नियमित अभ्यास से किसी की हैंडराइटिंग सुधारी जा सकती है?
1: जी बिल्कुल, हैंडराइटिंग कोई जन्मजात कला नहीं है बल्कि यह अभ्यास से विकसित होती है। यदि कोई व्यक्ति रोज 15 से 20 मिनट ध्यान से लिखे और अपनी गलतियों को सुधारे तो धीरे धीरे उसकी लिखावट बेहतर होने लगती है। सबसे जरूरी चीज है धैर्य और निरंतरता।
0: जी बहुत ही मोटिवेशनल बात कही मैडम आपने, मेहनत और अभ्यास से हर चीज संभव है। अगर कोई युवा अपनी हैंडराइटिंग सुधारना चाहता है तो उन्हें शुरुआत कैसी करनी चाहिए?
1: सबसे पहले उन्हें जल्दी जल्दी लिखने की आदत छोड़नी चाहिए। शुरुआत में धीरे धीरे और साफ लिखना जरूरी है। अक्षरों का सही आकार बनाना, शब्दों के बीच दूरी रखना और लाइन में लिखने का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे स्पीड अपने आप बढ़ जाती है।
0: जी मैम, क्या लिखावट में पेन का चुनाव भी हैंडराइटिंग को प्रभावित करता है? कई बार छात्रों को लगता है कि

0: यही पेन से मेरी राइटिंग अच्छी आएगी, तो क्या ये सच बात है?
1: जी हाँ, सही पेन का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। यदि पेन बहुत ज्यादा भारी हो या ठीक से ना चले तो हाथ जल्दी थक जाता है और लिखावट बिगड़ने लगती है। हर व्यक्ति की पकड़ अलग-अलग होती है, इसलिए ऐसा पेन चुनना चाहिए जिससे लिखते समय आराम महसूस हो। लेकिन पेन बदलने से हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो जाती, अभ्यास भी उतना ही जरूरी है।
0: मैम, आजकल तो डिजिटल दौर चल रहा है, तो फिर हैंडराइटिंग का महत्व इतना क्यों बना हुआ है?
1: देखिए मुस्कान जी, तकनीक ने हमारी जिंदगी आसान जरूर बनाई है, लेकिन हाथ से लिखने का महत्व अभी भी खत्म नहीं हुआ है। स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षा में आज भी लिखित उत्तर देने पड़ते हैं। इसके अलावा हाथ से लिखना दिमाग को ज्यादा सक्रिय करता है और याददाश्त भी बेहतर बनाता है। अच्छी हैंडराइटिंग व्यक्ति की प्रस्तुति और व्यक्तित्व दोनों को मजबूत बनाती है।
0: मैम, क्या अच्छी हैंडराइटिंग भविष्य और करियर में भी मदद करती है, या इसका महत्व केवल पढ़ाई तक सीमित है?
1: जी नहीं, अच्छी हैंडराइटिंग का महत्व केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। कई पेशों में साफ और व्यवस्थित लिखावट बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे शिक्षक, लेखक, अधिकारी या अन्य प्रशासनिक कार्य। जब कोई व्यक्ति साफ लिखता है तो उसकी प्रस्तुति बेहतर दिखाई देती है और सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छी लिखावट व्यक्ति के आत्मविश्वास और प्रोफेशनल व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाती है।
0: मैम, अंत में हमारे युवा श्रोताओं के लिए आपका प्रेरणादायक संदेश क्या होगा?
1: मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि अच्छी हैंडराइटिंग केवल सुंदर अक्षरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और अनुशासन की पहचान भी है। कभी भी सीखना बंद मत कीजिए, रोज थोड़ा अभ्यास कीजिए और खुद पर विश्वास रखिए। छोटी-छोटी अच्छी आदतें ही जीवन में बड़ी सफलता का रास्ता बनाती हैं।
0: पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने इम्पोर्टेंट टिप्स हमारे श्रोताओं से शेयर किए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी, मुझे भी आज युवाणी के माध्यम से अपने विचार साझा करके बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि अच्छी हैंडराइटिंग केवल सुंदर लिखावट नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और व्यक्तित्व की पहचान होती है। अगर युवा नियमित अभ्यास करें और धैर्य बनाए रखें, तो वे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज मुझे अपने अनुभव आपके श्रोताओं तक पहुंचाने का अवसर मिला। धन्यवाद।
0: उम्मीद है दोस्तों, इस चर्चा के बाद आपको हैंडराइटिंग सुधारने में ये टिप्स काम आएंगे। और अब पेश है आपके लिए एक प्यारा सा गीत।

इस प्यारे से गीत के बाद। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम अंक साइबर जगत की ओर और जानते हैं डिजिटल अरेस्ट से बचने के तरीकों को। दोस्तों, आज इंटरनेट और मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग, शॉपिंग और सोशल मीडिया ने जिंदगी आसान जरूर बनाई है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आजकल एक नया साइबर फ्रॉड सामने आ रहा है जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो अपराधी होता है वह खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी या बैंक कर्मचारी बताकर लोगों को कॉल करता है। वो कहता है कि आपका बैंक अकाउंट किसी गैर कानूनी काम में इस्तेमाल हुआ है या आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। कई बार वीडियो कॉल पर नकली आईडी कार्ड और पुलिस स्टेशन जैसा माहौल दिखाकर लोगों को डराते हैं। डर और घबराहट में कई लोग अपनी बैंक डिटेल्स, ओटीपी या पैसे तक दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती, इसीलिए ऐसे किसी भी कॉल से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर फिर भी आपके पास ऐसा कॉल आए तो तुरंत शांत रहे, कॉल कट कर दे और किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह ले। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक डिटेल्स या पासवर्ड कभी ना बताए। डिजिटल सुरक्षा के लिए कुछ सावधानियां जरूरी है। अपने मोबाइल और बैंक अकाउंट का पासवर्ड मजबूत रखें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा ना करें। अगर आपके साथ कभी साइबर धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें। जितनी जल्दी शिकायत करेंगे उतनी जल्दी मदद मिलने की संभावना रहती है। दोस्तों, आज के समय में युवाओं और परिवार के हर सदस्य को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। किसी भी फर्जी लिंक, कॉल या लालच में आकर अपनी निजी जानकारी साझा न करें और हमेशा सतर्क रहे। याद रखिए, जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। और मनोरंजन का उपाय संगीत है, तो लीजिए पेश है एक और प्यारा सा गीत।

इसी के साथ कार्यक्रम युवानी में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी, और उसके साथ ही हम आपको बताएंगे हमारे कल की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर हमारे स्टूडियो सुनिए कार्यक्रम गोधुली में लता मंगेशकर के गाए हुए भक्ति गीत। 6:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और 6:50 पर सुनिए सबरस। सबरस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गजल, भजन, कव्वाली और गैर फिल्मी गीत। श्रोताओं, शाम 7:20 पर हमारे स्टूडियो सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें आज की बात का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। सामिक कृषि चर्चा में जानिए आम के बगीचों की रखवाली भी है जरूरी, तथा श्रृंखला बातें खेती किसानी की, और जानिए मौसम व बाजार भाव। राती 8 हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हमारा बैतूल। कार्यक्रम हमारा बैतूल में बैतूल नगरपालिका परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री नवनीत पांडे से बैतूल शहर में नगरपालिका के विकास कार्यों पर बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। श्रोताओं, रात्रि 9 से 10 तक विद्या भारती सेवा के कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे विद्या भारती मुंबई से, और रात 10 हमारे स्टूडियो सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। रात 10:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए कैलाश खेर के गाए हुए गीत, और रात 11 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, और रात्रि 11:10 पर हमारे आज की प्रसारण सभा की समापन की उद्घोषणा होगी। श्रोताओं, ये तो थे हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब आइए जानते हैं हमारी कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। श्रोताओं, हमारी कल की सभा आरंभ होगी 5:55 पर। 6:05 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आशा भोसले, नंदिनी शरण, अनूप जलोटा और सुमन कल्याणपुर के गाए हुए भक्ति गीत। कल 6:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए कार्यक्रम चिंतन, और 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस गान, स्वर होगा अनुराधा पौडवाल और श्रीकांत पारगांवकर का। कल 6:45 पर हमारे स्टूडियो सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम, लोक रंजनी कलाकार होंगे दुर्गेश उइके और साथी। श्रोताओं, कल 7:20 पर हमारे स्टूडियो सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। कल 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 9 से 10 तक विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित करेंगे हम विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिसमें आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत और दूसरे रंगारंग कार्यक्रम। श्रोताओं, कल 10 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, और 10:05 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत। कल 10:30 पर सुनिए महिलाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज की बात का विषय होगा खेलों में बेटियां। साथ ही सखियों के पसंद के गीत, और सेहत की पोटली में जानिए थकान, कमजोरी और पोषण के कारण और उसके उपाय। कल 11 से 2:10 तक विद्या भारती मुंबई से मनोप्रसारित करेंगे विद्या भारती सेवा के कार्यक्रम।

कल दोपहर 2:30 से 5:30 तक वेद भारती मुंबई से सुनवाएंगे आपको फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, और कल शाम 5:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए युवाओं का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा युवाओं में हो ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी स्तंभ अजब गजब दुनिया, और साथ ही सुनाएंगे फिल्मी गीत। श्रोताओं कल शाम 6:05 पर सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर, कलाकार होंगे दिनेश नागले। कल शाम 6:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 6:50 पर कार्यक्रम सबरस। कल शाम 7:20 पर होगा किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा खाली समय का सदुपयोग कैसे करें। सामयिक कृषि चर्चा में चीकू स्वादिष्ट और पौष्टिक फल पर हम आपसे चर्चा करेंगे। श्रृंखला बातें खेती किसानी की, और जानिए मौसम व बाजार भाव। कल रात 8:00 हमारे स्टूडियो सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रमाधुरी, और 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम युगल गीत। रात 10:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे, कार्यक्रम है आपकी पसंद। श्रोताओं कल रात 10:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम गायन पंडित कुमार गंधर्व का राग दुर्गा। कल रात 11:00 आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से मन बसायत करेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात 11:10 पर हमारे कल के कार्यक्रम के समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं ये थे कार्यक्रम विवरण जिसे हमने आप तक पहुंचाया। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम गौधुली, तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के सुर में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गौधुली और हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में उनके गाए हुए भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोधुली में लता मंगेशकर के गाए हुए भक्ति गीत। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तो आइए सुनते हैं फिल्म कभी हां कभी ना का ये गाना। कुमार सानू और देवकी पंडित की आवाज में गीतकार है मजहूर सुल्तानपुरी, संगीतकार जतिन ललित।

0: Akashwadi at 90.
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म सरफरोश का ये गीत। संगीतकार जतिन ललित, गीतकार समीर और आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तो आइए सुनते हैं फिल्म कोयला का ये गीत, अलका याग्निक को कुमार सानू की आवाज में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन।

श्रोताओं, इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, कार्यक्रम सबरस में हम आपको सुनवाते हैं भजन, गजल, कव्वाली और गैर फिल्मी गीत। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये भजन।

श्रोताओं, कार्यक्रम सबरस में आइए सुनते हैं अब ये गजल जगजीत सिंह के स्वर में।

یوسف نبی پر فدا

नजारा किया है उसका नहीं है जवाब, उसका नहीं है।

पलकी पर मुको चुकाले धानी पलकी पर मुको चुकाले ये तू जो रुख से हटे ये तू जो रुख से

श्रोताओं, इब्बू कव्वाल की इस गाई कव्वाली के साथ कार्यक्रम सबरस अब संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम मनप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: हो गया इंतजाम। किसका? बुद्धि की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। बताए कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।
0: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: आरबीआई कहता है
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। रेड क्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं, कहा राज्यपाल ने। प्रदेश में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान आज से शुरू। और प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। मौसम विभाग ने तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने ओस्लो में सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने पर सहमति जताई। ये स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और हरित बदलाव के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की और आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और तेजी से फैले। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि रेड क्रॉस के सिद्धांत बच्चों में सेवा, सद्भाव, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करते हैं। आज भोपाल में आयोजित जूनियर रेड क्रॉस और युवक रेड क्रॉस शाखा की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए सक्षम पीढ़ी के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों में रेड क्रॉस की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान बच्चों में ज्ञान और संस्कार को प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। संस्थानों को विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। उन्हें समसामयिक चुनौतियों और जीवन की प्रतिस्पर्धाओं के लिए जुझारू बनाएं, वहीं सफलताओं के दबाव और तनाव प्रबंधन से निपटने का हुनर सिखाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मरीज की चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, मानव सेवा का एक माध्यम है। आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक MOU बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे चिकित्सक तैयार करने हैं जो मानव सेवा और मरीज की सेवा के लिए तत्पर हो। इस MOU का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को सेवा प्रधान स्वास्थ्य नेतृत्व का मॉडल बनाना है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मितवयी जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने कहा कि देश की जनता उनके आह्वान का गंभीरता से पालन कर रही है।

0: वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से नित्य वही जीवन शैली अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और आत्मनिर्भरता के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उनके आह्वान का देश की जनता बड़ी गंभीरता से पालन कर रही है। समाज के हर एक वर्ग ने गंभीरता से लिया है और उसके अनुरूप नित्य व्ययता अपनाने का, डीजल पेट्रोल की खपत घटाने के और बाकी उपायों को भी समाज का लगभग हर वर्ग कर रहा है।
1: प्रदेश में हाल ही में नियुक्त निगम मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के लिए आज विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। जनजातीय वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज से 25 मई तक राष्ट्रव्यापी सूचना शिक्षण संचार अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान संचालित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने विभाग के सभी मैदानी अधिकारियों को सफलतापूर्वक शिविर लगाने और लक्षित समूह को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन फोरम की शासी निकाय की बैठक ली। विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में विगत बैठक के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री पटेल ने आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के एचआर मैनुअल पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी लगातार बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। गुना में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आमजन को तेज गर्मी और लू का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, इंदौर संभाग के कई जिलों में लू चलने का अलर्ट भी जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल नंदभाई पटेल के बैतूल जिले में 20 मई को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का संभागायुक्त ने आज निरीक्षण किया। झाबुआ में कल विकासखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। आगर मालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष ने नगर के वार्ड क्रमांक 7 में 20 लाख रूपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड का आज भूमि पूजन किया। नर्मदापुरम जिले में आयुष विभाग द्वारा घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान के तहत जिले भर में नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर जिले की बुद्धि तहसील में भारत सरकार जनगणना निदेशालय के अधिकारियों ने यहां चल रही जनगणना तैयारियों का निरीक्षण किया। शिवपुरी में विद्युत समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर।

FM रेड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। किसान भाई सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुन रहे हमारे प्यारे किसान भाइयों और सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपने दोस्त दिलीप देशमुख का अपने इस मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा में स्वागत है। चलिए किसान भाइयों, आज की अपनी जो ग्राम सभा है उस पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, साथ ही हमारी कृषि चर्चा में शामिल करेंगे आम के बागों की रखवाली भी जरूरी है और पशुपालन एक व्यावसायिक लाभ हो सकता है, इस विषय पर हमने ग्राम

जीरा के हमारे जो कृषक है राजू पवार जी, इनसे हमने बातचीत की है, साथ ही खेती बाड़ी की श्रृंखला से संबंधित कुछ बातचीत करेंगे। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की ग्राम सभा की मुख्य बातें। चलिए बातचीत को हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के साथ। श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को संग्रहालय के महत्व को समझाना, उनके बारे में जागरूक करना, ये महत्वपूर्ण होता है। संग्रहालय हमारे इतिहास, संस्कृति, कला, विज्ञान और परंपराओं को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। यह केवल पुरानी वस्तुओं को रखने का स्थान नहीं होता, बल्कि यह ज्ञान और प्रेरणा का केंद्र भी होता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी और तब से लेकर आज तक दुनिया के अनेक देशों में यह दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। किसान भाइयों, संग्रहालय किसी भी देश की संस्कृति, धरोहर को सुरक्षित रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां पर प्राचीन वस्तुएं, मूर्तियां, हथियार, चित्र, पुराने दस्तावेज, सिक्के, कपड़े और कई ऐतिहासिक चीजें सुरक्षित रखी जाती है। इन वस्तुओं के माध्यम से हमें अपने पूर्वजों के जीवन, उनकी कला, संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। किसान भाई, संग्रहालय में हमें अतीत से जोड़ते हैं और इतिहास को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। सामान्यतः आज के आधुनिक युग में भी संग्रहालय का बहुत अधिक महत्व है। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी संग्रहालय में जाकर नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। यहां जाकर उन्हें पुस्तकों से अलग वास्तविक वस्तुओं को देखने का अवसर भी मिलता है। इससे उनकी शिक्षा अधिक रोचक और प्रभावशील होती है। किसान भाइयों, संग्रहालय बच्चों और युवाओं के इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि पैदा करते हैं। यही कारण है कि शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को समय समय पर संग्रहालयों में भ्रमण भी कराया जाता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमें अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को समझने, उनके महत्व को समझाने का अवसर प्रदान करने का कार्य होता है। संग्रहालय हमारे अतीत की अमूल्य धरोहर हैं, जिन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। संग्रहालय केवल इतिहास को सुरक्षित नहीं रखते, बल्कि समाज को शिक्षा और प्रेरणा भी देते हैं। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। यदि संग्रहालय न हो तो हमारी कई ऐतिहासिक धरोहरें समय के साथ साथ नष्ट हो सकती है। इसलिए संग्रहालय की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। आज हम देखते हैं किसान भाइयों की जो भी हमारी पुरानी संस्कृति है, पुरानी धरोहर है, उनको हम सुरक्षित रखते हैं और उनसे सीखते हैं, तो ऐसी जगहों पर हम संग्रहालय बनाते हैं जहां पर हम कभी भी जाकर के उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे छोटे बच्चों को लेकर जा सकते हैं, स्कूल के बच्चों को भी हम कई बार ले जाते हैं। तो संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हमको देखने को मिलती है, जैसे हमने बताया सिक्के, कई प्रकार के कपड़े, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र आभूषण और पुराने हमारे बुजुर्गों के द्वारा किस प्रकार से अपनी जीवन यापन करने की सामग्री उनके पास होती थी, वो सब चीजें हम संग्रहालय में देखते हैं। संग्रहालय में हम विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को भी हम अन्य दूसरी जगह के रूप में रखते हैं, वो भी हमारी धरोहर है। आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार हम पुस्तकें, अन्य जो चीजें, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनको हम रखते हैं, इन श्रेणी में रखते हैं, लेकिन सजीव वस्तु को भी हम संग्रहालयों के माध्यम से और ऐसे उद्यानों के माध्यम से ऐसे केंद्र बनाए जाते हैं जहां पर हम पशु पक्षियों को भी रखते हैं और वहां पर उनकी अपनी एक धरोहर के रूप में उनको सुरक्षित रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हमारी सामाजिक संरचनाओं को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की बातचीत कि किस प्रकार हम संग्रहालय की अपनी एक सुरक्षा रखें। कार्यक्रम में हम और भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन लेते हैं मनोरंजन के लिए प्यारा सा लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी नारायण वरबड़े और साथियों की आवाज में ये प्यारा सा लोक भजन। और अब जैसा कि हमने कृषि चर्चा में शामिल किया था कि आम के बगीचों की रखवाली हम कैसे करें, किसान भाइयों, आज अगर हम अपनी कृषि में अतिरिक्त आमदनी की बात करें तो बहुत सारे विकल्प हमारे सामने हैं जिससे हम अपनी अतिरिक्त आमदनी को जुड़ा सकते हैं। हम पशुपालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं और मत्स्य पालन की ओर भी जाते हैं, अन्य दूसरे विभागों के भी हम काम करते हैं, उद्यानिकी में काम करते हैं, जिसमें आज हम आम के बगीचों की बात करते हैं जो उद्यानिकी विभाग से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा प्रकल्प है। आम के बगीचों को हम आने वाले कई दिनों से देख रहे हैं, पूर्वजों के द्वारा भी आम के पेड़ों को लगाया जाता था। आम हमारे देश में महत्वपूर्ण एक फल माना जाता है, फलों का राजा भी है। गर्मियों का मौसम जैसी आता है, बाजारों में आम की जो अपनी मिठास है और खुशबू हर किसी के मन को मोह लेती है। आम केवल स्वादिष्ट फल ही नहीं बल्कि किसानों की एक अपनी आय का साधन भी है, जैसा कि हमने पहले बातचीत में शामिल किया। देश के हर राज्यों में बड़े बड़े आम के बगीचे पाए जाते हैं और इन बागों की देखभाल और रखवाली करना एक महत्वपूर्ण काम हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। हम देख रहे हैं कि इस साल जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में हवाएं और कहीं कहीं बिजली इस प्रकार के प्रकोप हुए जिससे कि आम के बगीचों को काफी नुकसान हुआ है। लगभग लगभग बहुत सारी हमारे कच्चे फल जो है वो टूट कर नीचे गिर जाते हैं, कई बार बौर भी झड़ जाता है। तो इसके कुछ ऐसे उपाय हम कर सकते हैं, जैसे कि बोर्डो पेस्ट जो होता है उसका हम बौर आने के पहले आम की जो जड़ के ऊपरी सतह पर तने वाले भाग में बोर्डो पेस्ट के मिश्रण को हम उसको पुताई कर सकते हैं। बहुत अधिक छोटे अगर पेड़ हैं जहां पर अधिक मात्रा में बौर आया है तो कुछ बौर को हम पहले ही कम कर सकते जब कैरी न लगी हो। दूसरी चीज, जहां टहनियां बहुत अधिक मात्रा में झुकी है उसके लिए नीचे से हम कुछ सहारा भी दे सकते हैं। और इस प्रकार आज ये स्थिति तो हम फल लगने तक के कार्य को करके हम उनकी रखवाली कर सकते हैं, लेकिन फल लगने के बाद भी ऐसी स्थिति आती है जहां पर पशु पक्षियों के माध्यम से भी को नुकसान पहुंचाया जाता है, पक्षियों के माध्यम से फलों को नुकसान होता है। तो पक्षियों की जो नुकसान करने की जो स्थिति है, जैसे कई बार कच्चे फलों को खा जाना, गिरा देना, तो उसके लिए भी हम कुछ ऐसे कृत्रिम उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि पक्षी उस पर न बैठे। किसी प्रकार के काग घोड़ा और अन्य किसी पुतले या अन्य जो भी जिससे कि पक्षी डर जाएं, ऐसी स्थिति को हम

0: निर्मित करके उन पर आम के बगीचों को लगा सकते हैं। दूसरी चीज किसान भाई, जैसे गर्मी के दिनों में अगर हमारे छोटे आम के बगीचे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, तो इन दिनों में जैसे एक या दो साल का पौधा है तो उनके थारलों की सफाई करें। थारलों की सफाई करने के साथ आसपास उसकी मिट्टी को भुरभुरी बना लें, उसमें गोबर की कंपोस्ट खाद और अन्य जो भी रासायनिक खाद है जिसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी स्थिति को बनाकर ग्रीष्म काल में टपक सिंचाई पद्धति का भी हम सहारा लेकर के आम के पौधों को बहुत अधिक सुरक्षित रख सकते हैं। शासन के माध्यम से भी हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आम के बगीचों के लिए एक बगिया माँ के नाम हमारे किसान भाइयों को बड़े प्रोत्साहन के साथ में अनुदान पर ये योजना संचालित है, जिसमें हमारे किसान भाई एक एकड़ में 50 पौधे या 100 पौधे का टारगेट लेकर के अपने खेतों में एक मुश्त आम के बगीचे को लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार फलदार वृक्षों की खेती करना एक पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं बल्कि किसान भाइयों की एक अपनी अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी माना जाता है। हम उनकी सुरक्षा समय रहते हुए नहीं करेंगे तो हमारी बहुत अधिक मेहनत नुकसान हो जाएगी। जैसे फलों के बारे में हमने बताया कि हमारी जो देखभाल नहीं करने से किस प्रकार का नुकसान होगा, उसी प्रकार जब हमने पौधे छोटे लगाए हैं उन छोटे पौधों में भी हमारा नुकसान कैसे हो सकता है, इस पर भी हमने बातचीत की। तो हम गर्मी के दिनों में और अन्य जब भी जैसी ऋतु है उसके अनुसार हम उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। टपक सिंचाई पद्धति का सहारा ले, कम पानी है तो, या फिर अधिक पानी है तो हम उसमें थारले में भी भर सकते हैं, जलकुंड बना सकते हैं और नॉडेप कंपोस्ट खाद भी हम खुद अपने बगीचे के पास में तैयार कर सकते हैं। टाका बना सकते हैं 10x10 का, उसमें नॉडेप कंपोस्ट खाद, धीरे धीरे गोबर की मात्रा, कचरा, घास फूस, इस प्रकार के जो भी सड़े गले पदार्थ हैं जो हम कंपोस्ट खाद वहीं पर एक टाका बना करके तैयार कर सकते हैं, जो आसानी से पौधों को समय समय पर हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार आम के बगीचों के साथ साथ अन्य भी जो भी हमारे अमरूद के बगीचे हैं, नींबू के बगीचे हैं या जामुन है, इस प्रकार के पौधों की भी सुरक्षा हम अपने बगीचों के कर सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी बहुत अच्छे से बरकरार रह सकती है। किसान भाइयों, इसमें किसी प्रकार की बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं है। हमारे किसान भाई चाहे तो प्रति एकड़ के रूप में भी लगा सकते हैं, खेत की मेड़ों पर लगा सकते हैं, बंजर जमीन का सदुपयोग कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ बातचीत और अब हम पशुपालन व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर हमने ग्राम टेमझिरा के कृषक राजू पवार से बातचीत की है। आइए सुनते हैं इनकी बातचीत।
1: आज हम पशुपालन व्यवसाय की बात करें तो पशुपालन व्यवसाय हमारे युवा साथियों के लिए, युवा कृषकों के लिए बहुत ही एक लाभदायक व्यवसाय सिद्ध हो रहा है और ये व्यवसाय हमारे कई तमाम क्षेत्रों में लाभ पहुंचा रहा है। तो क्यों ना हम इस व्यवसाय को करें, इस व्यवसाय से जुड़े, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ युवा कृषक जुड़े हैं। आप अपना सुझाव बताइए।
2: राजू पवार, मैं टेमझिरा और खाना का रहने वाला हूँ। मैं वहीं पर पशुपालन और कृषि दोनों कार्य करता हूँ।
1: कितनी जमीन है आपके पास में?
2: जी, 10 एकड़ जमीन है मेरे पास और साथ में गाय है, बैल है, भैंस है, तो मैं दूध वाला भी व्यवसाय करता हूँ।
1: तो पवार जी, जैसा कि हमारी बात का आज का विषय है कि भाई आज हम पशुपालन व्यवसाय को कर रहे हैं, हमारी युवा साथियों को करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा धीरे धीरे हमें देखने में आ रहा है कि पशुपालन व्यवसाय कम होते जा रहा है। हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के पास पशुओं की संख्या कम होती जा रही है, तो इसका क्या कारण है, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है?
2: इससे तो ऐसी जो लोगों की मानसिकता है, लोगों की मानसिकता परिवर्तित हो चुकी है।
1: अच्छा,
2: पर अपनी जो मानसिकता को चेंज करना चाहिए और हमें पशुपालन जैसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि देखिए वर्तमान समय में इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी छोड़ो प्राइवेट नौकरी भी मिल पाना संभव नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें क्यों ना कि इधर उधर भटके, उसके बजाय हम स्वयं का कोई जॉब करें, स्वयं का कोई व्यवसाय करें, तो ना तो हम बंधक बन के रहेंगे और आजाद रूप से हम अपना कार्य भी कर सकते हैं। और जैसे अपना पशुपालन है तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों ना हमारा जो माइंड हम पशुओं की तरफ लगाए और हम नए तरीके से करें पशु व्यवसाय, तो पशु व्यवसाय से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे और हम बेरोजगार भी नहीं रहेंगे और हम इसमें काफी लाभ प्राप्त कर लेंगे। और इससे हमें दूध से भी लाभ है, इनके गोबर से लाभ है, इनके शरीर से भी हमें लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम, और इसको हम पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे भी दिन में हम हमारा कृषि कार्य करेंगे और सुबह और शाम है पशु संबंधित कार्य करेंगे। जैसे कि भी एक टीचर लोग हैं, टीचर लोग पार्ट अटैक

0: लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसी तरह एक कृषक पार्ट टाइम जॉब करने हैं तो वो पशुपालन कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हम गाय की बात करें और या भैंस की बात करें, तो इससे हमें जो दूध प्राप्त होता है, दूध से पनीर, बेकरी, मावा, मिठाई, हम कई चीजों का निर्माण कर सकते हैं। साथ में हम घी का निर्माण कर सकते हैं, जो कि सभी विटामिन, सभी रोग बीमारी होने पर भी ये हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होता है। और इसके साथ में जो जानवर से जो हमें गोबर प्राप्त हो रहा है, तो गोबर के द्वारा जैविक खाद प्राप्त हो रही है। जैविक खाद की वजह से, जैसे आज रासायनिक खाद वर्तमान समय बहुत महंगी भी है, प्रदूषण रहित भी है, इसलिए हमें गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि गोबर की खाद का अगर हम खेतों में प्रयोग करेंगे तो पहली बात तो न किसी प्रकार का प्रदूषण फैलेगा, और दूसरी बात ये है कि गोबर की खाद से, अगर गोबर की खाद अगर हम किसी फसल के ऊपर, किसी खेत में डालते हैं, तो वहां पर हमें पानी की कम मात्रा लगेंगे। जैसे कि अगर हम जनरली गेहूं है, तो गेहूं में अगर हम यूरिया, डीएपी जैसे अगर खाद का छिड़काव करते हैं, तो उस गेहूं के लिए हमें 5 या 6 पानी देना पड़ेगा, 5 से 6 पानी। और वहीं अगर हम गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर हमें 3 से 4 पानी देना पड़ेगा और फसल अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। और साथ में फिर धीरे धीरे क्या होगा कि यही अगर हम यूरिया, डीएपी जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे, तो जमीन की उर्वरा क्षमता कम होते जाएंगी। और अगर गोबर की खाद से निर्मित जैविक खाद का अगर प्रयोग करते हैं, तो हमारी मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ते चलेंगी और इस तरह से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। इसलिए हमें जानवरों के वेस्ट मटेरियल अर्थात गोबर और गौमूत्र से हम जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं।
1: पवार जी, जैसा कि आपने बताया कि इतने सारे फायदे हमारे एक पशुपालन व्यवसाय से किसान भाई को प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या कदम उठाना पड़ेगा हमारे किसान भाई को इस प्रकार का काम करने के लिए?
0: देखिए, सबसे पहले इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले हम क्या करें कि अगर हमें दूध प्राप्त हो रहा है, तो हम ये कहाँ भेजे, कहाँ इसको सेल करें, क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले हमें पशु शेड बनाना पड़ेगा। पशु शेड में हमारे पास उचित एक टाका हो और घास भूस रखने के लिए उचित स्थान हो, ताकि बरसात के समय से कोई दिक्कत ना हो। और जानवर को के जो बैठने की व्यवस्था है, वो एक समतल स्थान पर होना चाहिए, ताकि उसके बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड बात की जो उसका चारा, घास भूस खाने का जो उसका स्थान होता है, वो ऊंचाई पर होना चाहिए, ताकि जानवर खड़ा होने के बाद ही घास भूस को ग्रहण करे, न कि बैठे बैठे। और उसके बाद में उसका थोड़ा सा तिरछा भाग होना चाहिए, ताकि जो गौमूत्र हो वो एक निश्चित स्थान से उसको एक जगह स्टोर कर सके। अब गौमूत्र हम इसलिए स्टोर करेंगे क्योंकि इससे औषधि बनती है। औषधि ये बनती है कि जब फसलों पर कीड़े लग जाते हैं, तो फसलों पर कीड़े लगने के लिए हम आज वर्तमान समय में रासायनिक औषधि का यूज कर रहे हैं। तो रासायनिक औषधि का उपयोग न करके गौमूत्र के द्वारा हम औषधि का निर्माण कर लेंगे, और वही औषधि से हम कीटों को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। इसलिए हम गौमूत्र को स्टोर करें, इसलिए हमको मकान ऐसा बनाना है ताकि गौमूत्र एक निश्चित स्थान पर जाके इकट्ठा हो जाए। और साथ में हमें समय समय पर उनके प्रत्येक चीजों का ध्यान देना चाहिए। अगर थोड़ी सी बीमारी महसूस होती है, तो उसका इलाज कराना चाहिए। पशुओं का बीमा कराना चाहिए, और जो मकान है उसको ऐसे व्यवस्थित तरह से बनाए ताकि वहां आग लगने की संभावना न हो और हवा आती रहे, खुले में हो,
1: प्रकाश वगैरह सारी व्यवस्था,
0: प्रकाश भी आए वहां पे। और जानवर से हमें और भी अन्य कई लाभ है, जैसे इनके शरीर के द्वारा हम यूरिया खाद का निर्माण कर सकते हैं। इनकी चमड़ी भी हमारे काम में आती है, इनकी चमड़ी से हम ढोलक है, तबला है, या जो भी अन्य प्रकार के वाद्य यंत्र है, या जो भी यंत्र है, इससे इनकी त्वचा के माध्यम से बनते हैं। और यूरिया खाद का निर्माण भी हो जाता है इनके शरीर, इनकी जो अस्थियां होती है, अस्थियों से।
1: तो ये तो बहुत ही लाभप्रद योजना है, और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई को इस काम से जुड़ना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों के लिए कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है। ये व्यवसाय हमारे किसान भाई शुरू से करते आ रहे हैं, बस एक परंपरा का निर्वहन करने में थोड़ी सी लापरवाही दिखने में आ रही है। तो बहुत सारे फायदे हैं, और ये तो आपने हमारे जो युवा साथियों के लिए जो बात बताई कि भाई बहुत ही लाभप्रद बात है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी को दूर करना है तो हम इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। और दूध और पनीर जैसी जो आपने बातें बताई, ये तो बिल्कुल हमारे किसान भाई को नगद आय प्राप्त हो रही है, और बहुत सारे किसान भाई इस व्यवसाय को कर भी रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपका इनके और तमाम चीजों पे जो जानकारी है उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी व्यवस्थित इनको रखना है, इनको कोई ऐसी बीमारी वगैरह तो संभावित नहीं हो पाती है, तो उसके लिए क्या कदम हमको पहले से रखना चाहिए?
0: ये पशुओं को समय समय पर नहलाना चाहिए, और जो इनको हम भोजन देते हैं, इनको जो आहार देते हैं, वो आहार भी हमें उचित मात्रा में देना चाहिए। कभी कई बार क्या होता है कि जानवरों को हम जहाँ बांध कर रखते हैं, वे अचानक छूट जाते हैं, और कई जैसे सोयाबीन खा ली तो फिर उनका शरीर फूल जाता है। तो इस तरह से हमको ऐसे स्थान पर बांधना चाहिए, व्यवस्थित बांधना चाहिए, ताकि अगर जानवर छूटे भी

0: सुव्यवस्थित रहे। और जैसे किसी प्रकार कोई अन्य प्राणी उसके अंदर न पहुंचे, जैसे कुत्ते हैं, अगर कुत्ते पहुंच जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कुत्ते जानवरों को काट देते हैं, तो इस तरह कुत्ते भी अंदर न प्रवेश कर सके और जानवर छूटे तो अंदर ही रुक जाए, और अगर बाहर आता है तो इस प्रकार की जैसे सोयाबीन खा ली है या अन्य फसलों को खा लेता है, इस कारण उसके शरीर में ऐसी कंडीशन होती है। और वैसे जानवर बहुत कम बीमार होते हैं, और भैंस है तो उसको प्रति 8 दिन के बाद नहलाना चाहिए और उसके बाल काट लेना चाहिए। अब बाल काटने के बाद पर बाल फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि बालों से रस्सी का निर्माण होता है, रस्सी बना सकते हैं, वो काफी मजबूत होती है। तो इस तरह से हमें प्रत्येक चीज पे ध्यान रखना है और समय समय में नहलाना है और इनके बाल वाल बनवाना है, और अगर तबीयत खराब होती है तो फौरन डॉक्टर को बुला करके इलाज करवाना चाहिए, और जनरली तो इससे तबीयत इनकी खराब बहुत कम होती है।
1: इसमें एक बात आती है, जो गर्भावस्था में जो पशु रहता है,
0: हाँ,
1: इसका क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है?
0: गर्भावस्था में क्या है कि उसको अन्य प्राणियों से उसको बचा के रखना है।
1: हाँ, अगर मान लीजिए दूसरे जो पशु है,
0: जैसे भी गाय बैल है, हमने साथ में खेत में ले गए चराने के लिए, अब खेत में साथ में ले गए हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर दौड़ जाता है मारने के हिसाब से या धक्का लग जाए, तो इस कंडीशन में हमें उस जो गर्भावस्था में जो प्राणी होता है इसको हमें अलग साइड से ले चलना चाहिए या उसे ज्यादा खेत में ले जाने की जरूरत नहीं, उसे एक ही स्थान पर बंधे रहने देना चाहिए, या अगर उसे जनरल ले जाती भी है तो अन्य जानवरों से हटके ले जाना चाहिए, उनके भीड़ में नहीं ले जाना चाहिए ताकि उसे किसी प्रकार की कोई ठेस ना पहुंचे।
1: और ऐसा महसूस होता है कि भाई पशु हमारा एक दो चार दिन में ब्यानने वाला है, तब तो हमको बहुत सारी सावधानी रख करके उसके साथ में रहना चाहिए, क्योंकि ये भी एक स्थिति बड़ी ये होती है जिसमें कि पशु को ब्यानते समय ध्यान रखना चाहिए।
0: उस समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और वो समतल जगह पे हो और हमारी निगरानी में हो, क्योंकि उस समय जो होता है तो जार वगैरह जो कुत्ते वगैरह ना ले जाए या अन्य प्राणी ना ले जाए, तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: अच्छा, खेतीहर जो हमारे पशु रहते हैं, बैल जो अभी काफी इन दिनों में तो काफी उनका उपयोग किया जाता है, तो कितना काम हमारे पशुओं से लेना चाहिए, कैसा उनका आहार?
0: बैलों से भी काम हमें समय समय पर लेना चाहिए। अगर जैसे सुबह से अगर हम शुरू करते हैं, अगर 10 से बात करते हैं तो अगर 2 बजे तक अगर हम हल का प्रयोग कर रहे हैं तो बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेना ही चाहिए, ताकि उस समय जानवर अपना घास भूस खा सके और उसका रेस्ट भी हो जाए। उसके बाद फिर और अगर 6 बजे तक अगर फिर अगर हम 3 से 6 अगर हल का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर और उनको रेस्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह से शुरू हो गए 6 बजे से और शाम के 6-7 बजे तक हल ही हल का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस बैल को भी अपने तरीके से आराम देना चाहिए, क्योंकि वो जितना रिलैक्स करेगा उतने अच्छे तरह से और कार्य करेगा और ताकत के साथ और खींचेगा, स्पीड से कार्य करेगा, तो इसलिए उनको आराम देना जरूरी।
1: तो धन्यवाद पवार जी, ये जो बातें हैं हमारे युवा साथियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अगर वो इस व्यवसाय से जुड़ते हैं तो एक बहुत ही अच्छी उनको आमदनी का जरिया प्राप्त हो जाता है, और नौकरी के लिए भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से चाहे वो स्वयं के इस तरह से कार्य कर सकते हैं या शासन की योजनाओं का भी वो लाभ ले सकते हैं और पशुपालन व्यवसाय को कर सकते हैं। आज आपने पशुपालन व्यवसाय के ऊपर जानकारी दी है, आपकी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगी और वे जरूर इसके ऊपर अमल करके लाभ उठाएंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आप सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी है बातचीत, और बातचीत के अंतराल के बाद फिर और आपको सुनवाते हैं प्यारा सा लोक भजन समूह स्वर में ग्राम नाहिया के कलाकारों के माध्यम से।

श्रोताओं, वर्ष 2000 के बाद से अब तक हिंदी फिल्म संगीत का आधुनिक युग शुरू हुआ। बॉलीवुड संगीत के आधुनिक युग की विविधता, प्रयोग और समकालीन रुझानों के अनुकूल की विशेषता रखता हुआ ये समय था जब संगीत शैलियों का मिश्रण, नवीन रचनाएं और तकनीकी प्रगति ने बॉलीवुड संगीत को एक वैश्विक पहचान दी और इसी दौर में नए नए गायकों और नई पीढ़ी का पदार्पण हुआ। इस युग में सोनू निगम, कुमार शानू, उदित नारायण और वर्तमान में अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, नेहा कक्कड़ जैसी नई प्रतिभाएं सामने आई और ऐसे दौर में रिमिक्स और नए तरीके के गीतों का प्रचलन भी शुरू हुआ। वर्ष 2000 के बाद इसी दौर में टी सीरीज जैसी कंपनियों ने नए संगीत की रचना शुरू की और नए ढंग से गीतों को लोगों के बीच में पेश किया। हाल ये हो गया कि फिल्में गीतों के लिए ही बनने लगी, फिल्मों से कहानियां गायब होने लगी और गीत सर्वोपरि हो गया। ऐसे ही टी सीरीज ने उस दौर में एक ऐसी शानदार फिल्म बनाई जो सिर्फ गीतों के साथ के लिए जानी गई और इसे भी बनाया गया गीतों के लिए और बड़ी सुपरहिट रही, और वो फिल्म थी लाल दुपट्टा मलमल का। तो आइए सुनते हैं इसका ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब संपन्न होता है। फिल्मी गीतों के सफर को और जानेंगे फिर कभी और, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए हम चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। एफएम वेव 103.1 MHz पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारा बैतूल। इसमें सुनिए बैतूल नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री नवनीत पांडे से बैतूल शहर में नगर पालिका के विकास कार्यों पर बातचीत।

0: हमारा बैतूल।
1: हमारा बैतूल, श्रोताओं आप सबका स्वागत है हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। और आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित है बैतूल नगर पालिका परिषद के चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर श्री नवनीत पांडे साहब, जो कि बैतूल शहर में नगर पालिका के विकास कार्यों पर आपको जानकारी देंगे। पांडे साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका।
1: सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बैतूल से पहले से जुड़ाव रहा है, और हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि आकाशवाणी से भी आप जुड़े रहे हैं बैतूल के।
2: मेरा बचपन, यहाँ की पढ़ाई मेरी हायर सेकेंडरी तक की बैतूल में ही हुई है। हम लोग मूल रूप से प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। पिताजी के जॉब यहाँ पर होने के कारण कुछ समय मेरा बैतूल में बीता, और उसी दौरान मेरा जो संबंध बना वो आकाशवाणी से बना। आकाशवाणी में सन 2007 में मैं युवा वाणी प्रोग्राम के लिए चयनित हुआ था। एक वर्ष तक 2007 से 8 तक ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस संस्था से जुड़ा रहा। हमारी ट्रेनिंग भी इसी संस्थान में हुई, 7 दिवसीय ट्रेनिंग थी। उस समय मीणा सर जो यहाँ के प्रमुख थे, उनके संरक्षण में हम लोगों ने एक बहुत ही सुंदरतम दौर आकाशवाणी का देखा है। तो मेरा काफी अच्छा जुड़ाव इस संस्थान से बना रहा।
1: बहुत अच्छी बात है, और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आप शहर से और आकाशवाणी से भलीभांति परिचित हैं। और ये जो हमारा बैतूल शहर का नगर पालिका परिषद का कार्यालय भवन है, ये भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। क्या खासियत है, और इस तरह के और कितने हमारे ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की इमारतें हैं?
2: बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि जो यहाँ की नगर पालिका बिल्डिंग है, ये से बने हुए लगभग 125 साल हो चुके हैं। ये एक ऐतिहासिक विरासत है शहर के लिए। साथ ही इसके अलावा यहाँ का जो कलेक्ट्रेट भवन भी है, जो पुराना भवन रहा है, वो भी लगभग उसी के समकालीन रहा है। यहाँ पे ऐसी नगर पालिका की जो बिल्डिंग है उसको संरक्षित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसे संरक्षण दे, उसे नया रूप दे, और आने वाले दिनों में हम उसे और बेहतरी पुरातात्विक दृष्टि से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे शहर की नगर की पहचान बने।
1: पंडित साहब, अभी हाल ही में हमने विश्व धरोहर दिवस भी मनाया, तो आमतौर पर ऐसे शहरों में हेरिटेज वॉक का भी आजकल चलन आ गया है कि जो पुराने जानकार हैं वो उन बिल्डिंग्स को, इमारतों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे कि लोगों का जुड़ाव उस शहर से और उन इमारतों से होता है। क्या कुछ ऐसा भी आप करना चाहेंगे?
2: हमारा प्लान भी है, हम लोगों ने इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है, क्योंकि हमारे इस नगर के आसपास या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत ऐसे रहे हैं, जैसे मूर्तियां, यहाँ के कुछ ऐतिहासिक सिक्के या पुरातात्विक धरोहरें हैं, जो कि हमारे नेहरू पार्क के एक संग्रहालय में व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं। परंतु चूंकि वो संग्रहालय काफी पुराना हो चुका है, उसका भी ठीक से संरक्षण नहीं किया गया है, तो हमने आने वाले दिनों में उसे एक व्यवस्थित म्यूजियम का रूप देने की पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। हमारी पूरी कोशिश है कि शहर के जो भी ऐसे पुरातात्विक धरोहरें हैं, उनको हम व्यवस्थित रूप से एक स्थान दें, जहां पर हमारे शहर की जनता, लोग स्वयं जाकर के उन्हें देख सके और हमारी संस्कृति से जुड़ पाए।
1: बहुत अच्छी बात। अब हम आपके कार्यक्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे कि जो नगर पालिका परिषद बैतूल का कार्यक्षेत्र है, इसमें क्या क्या गतिविधियां संचालित की जा रही है?
2: नगर पालिका क्षेत्र में इतनी सारी गतिविधियां हैं कि शायद लगातार इस पे बोलते जाए तो भी कम पड़ेगा, पर मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि हमारे शहर में अगर कोई भी डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है नगर पालिका क्षेत्र में, चाहे रोड्स बन रहे हैं, फ्लाई ओवर, नालियां बन रही हैं, गार्डन्स बन रहे हैं, ये सभी जो भी नगरीय क्षेत्र से जुड़े हुए विषय हैं, उन्हें करने का काम, जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए काम, ये नगर पालिका करती है। एक विंग हमारी पूरी सैनिटेशन से संबंधित होती है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि सुबह से रात में पूरे शहरों में सफाई का कार्य चलता है। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड, जो हमारी तात्कालिक व्यवस्था रहती है, तुरंत जब भी कहीं से फोन आते हैं आगजनी के, तो 10 मिनट के 5 मिनट के अंदर हमारी टीम तत्परता से पहुंचती है। स्वरोजगार की योजनाएं हमारी बहुत सारी हैं, जो हमारी एक विंग है NULM शाखा, जहां से लोगों के स्वनिधि समृद्धि से या ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से जुड़ी हुई, जो कि संचालित होती है। इसके अलावा देखा जाए तो पूरे शहर की वाटर सप्लाई, पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट की समस्याएं, ये सब नगर पालिका से जुड़ी हुई है। और गहराई से अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका संबंध नगर पालिका से बन जाता है, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में।

0: जब उसका विवाह होता है तो वो जुड़ जाता है, उसका वैवाहिक रजिस्ट्रेशन नगर पालिका से होता है नगर पालिका क्षेत्र में, और जब वो देवगमन को प्राप्त होता है तो उसके बाद भी वो प्रमाण पत्र भी नगर पालिका से ही जारी होता है। तो पूरा जीवन भर का लेखा जोखा जो है वो हर व्यक्ति का नगर पालिका से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इस संस्था को नगर पालिका के रूप में जाना जाता है
1: जी। और एक और महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे स्वच्छता कर्मी इसमें सहयोग देते हैं, जो घर घर कचरा कलेक्शन होता है और फिर हरा कचरा और जो सूखा कचरा है इसका पृथक्करण किया जाता है, तो इसमें भी आजकल हर शहर अपने आप प्रयास कर रहा है, एक मोबिलाइजेशन हो रहा है कि स्वच्छ बैतूल हम भी बने
0: वाले हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा जब तक के सोर्स से ही हम लोग नहीं कलेक्ट करेंगे तब तक के हमारा ये अभियान सफल नहीं हो पाएगा। तो सोर्स एग्रीगेशन की हमारी पहली पद्धति है जो कि जन जागरूकता के रूप में हम लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं। शुरुआत में हम लोग निवेदन अनुनय की व्यवस्था करेंगे ताकि किसी भी तरह के न्यूसेंस की स्थिति ना बने। अभी फिलहाल में हम लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपना एक मस्कट तैयार किया है, गिलहरी।
1: अच्छा।
0: तो गिलहरी अब इस शहर की पहचान बनेगी। गिलहरी को हमने इसलिए लिया है क्योंकि गिलहरी प्रयास बहुत प्रसिद्ध एक उक्ति कही जाती है कि गिलहरी ने जो छोटे छोटे प्रयास करके अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, तो उसी तरह से इसी तरह का गिलहरी प्रयास अगर हर इंसान करे इस शहर का तो हम लोग इस शहर को बहुत स्वच्छ श्रेणी में लेकर आ सकते हैं, नंबर 1 बना सकते हैं। तो हम लोगों ने एक गिलहरी प्रयास अभियान भी लॉन्च किया है इस शहर में जो कि आने वाले समय में बहुत गति पकड़ेगा। एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर अप करने के लिए सफाई का, जैसे बस स्टैंड हो गया, नेहरू पार्क हो गया इस शहर के, तो बड़े बड़े क्षेत्रों को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। और एक दिन शनिवार को हमने शनिवार स्वच्छता का त्योहार ये अभियान के रूप में चिन्हित किया और हर शनिवार को हम लोग बड़ी संख्या में सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सम्मानित नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभी पार्षद इकट्ठे होकर के, समाज सेवी इकट्ठे होकर के इस स्वच्छता के त्योहार में हिस्सेदारी करते हैं। इस दौरान हमने नेहरू पार्क, गंज मंडी और बस स्टैंड में 3 शनिवार को बेहतर सफाई करवाई है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। स्वच्छता के क्षेत्र में हम लोग जन जागरूकता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक हमारा बड़ा पार्ट होता है कि जहां पर पूरे शहर का कचरा जाकर इकट्ठा होता है, ट्रिंचिंग ग्राउंड
1: जी।
0: तो ट्रिंचिंग ग्राउंड पे भी उस कचरे के लिए हम कंपोस्टिंग पिट बना रहे हैं। कंपोस्टिंग पिट में वहां पर उसे खाद के रूप में कन्वर्ट करके बेचने की हमारी प्लानिंग है। इसके अलावा जो भी हमारे MRF सेंटर्स हैं, हम कबाड़ियों से संपर्क करके बहुत सारा सामान उनके साथ कॉन्टेक्ट हमारे हैं। तो एक बड़े लेवल पर अब हमारा विचार ये है कि हम कोई भी कचरा ट्रिंचिंग ग्राउंड में इकट्ठा ना होने देने पाए, हम उसका वहीं की वहीं सेग्रीगेशन करके उसका पूरी तरह से निपटारा करें। तो दूसरे चरण में हमारा ये अभियान है। तो हम लोग ऐसे अलग अलग चरणों में इसको डिवाइड करके हम इस बैतूल को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 लाने के प्रयास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हमारे पास समय कम है, 1 महीने ही बचे हैं इस अभियान की रेटिंग के लिए, पर ठीक है, 1 दिन भी है तो वो हमारे लिए काफी है।
1: बिल्कुल, और सारा शहर इन प्रयासों में बिल्कुल साथ है। और चौराहे जो एक शहर की पहचान होते हैं, इनका भी कुछ सौंदर्यीकरण या इनके लिए, बगीचों के लिए क्या कुछ प्रयास चल रहे हैं?
0: सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि जब मैं आया तो माननीय विधायक जी की मंशा के अनुसार यहाँ पर नगर पालिका ने बहुत बेहतरी से काम करते हुए शहर के जो 10 प्रमुख चौराहे हैं उनके चौड़ीकरण के लिए प्रयास चालू कर दिए हैं। इस प्रयास में हम लोगों ने जितने भी चौराहे हैं वहाँ के चौड़ीकरण के लिए पेवर ब्लॉक्स लगाना, अगर कहीं पर रोड चौड़ी कर सकते हैं तो रोड चौड़ीकरण के लिए काम करना, जहाँ पे रोटरी की जरूरत है वहाँ रोटरी बनाएंगे। कुछ बाधाएं हैं पोल्स की या वृक्षों की जो भी चौराहों पर आवागमन में दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका भी समाधान निकालने के लिए नगर पालिका पूरी प्रयासरत है। तो आने वाले दिनों में पूरे शहर को बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े चौराहे दिखेंगे जहाँ पर हम लोग बहुत विधिवत तरीके से शहर की सुंदरता पर फोकस करने वाले हैं। आने वाले 1 सालों में इसमें बेहतरी आपको नजर आने लगेगी। अभी हमारे सामने समस्या ये है कि अभी भी हम सारे चौराहों पे काम चालू कर सकते हैं, पर जैसे नेहरू पार्क का भी चौराहा हम लोग चौड़ीकरण कर रहे हैं, हम बहुत सारी रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है ताकि जनता को समस्या भी ना हो, और जब एक जगह हमारा ये अभियान खत्म हो, एक चौराहा हमारा सौंदर्यीकरण की श्रेणी से आगे निकले, तब हम दूसरे पे जाएं ताकि जनता की भी हमको समस्याओं का ध्यान रखना पड़ेगा,
1: बल्कि
0: उसमें पैनिक ना आए हमारे शहर।
1: हमारे शहर की जनता भी महसूस कर रही है ये जो परिवर्तन और विकास हो रहा है। और कौन कौन सी ऐसी नागरिक सुविधाएं हैं जो कि नगर पालिका परिषद के जरिए लोग अपने लिए पा सकते हैं?
0: हमारे शहर के जनप्रतिनिधि इस कार्य में बहुत सजग हैं क्योंकि जनप्रति प्रतिनिधि जितने भी हैं हमारे माननीय सम्मानित विधायक जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय या हमारे जो सम्मानित अभी कलेक्टर महोदय आए हैं, उन्होंने भी मेरे साथ बैठक ली है, उनकी भी विचारधारा सोच जो है बहुत अग्रणी है।

0: जैसे कि यहाँ पर जो अभी लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है वहाँ पे एक बहुत ही बेहतर और सुंदर इंडोर स्टेडियम बनाने का प्लान है, क्योंकि हमारे शहर में कोई भी इंडोर स्टेडियम नहीं है। क्योंकि उस स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत सारे ऐसे खेल होते थे, तो एक अलग क्रिकेट स्टेडियम का लगभग वर्क ऑर्डर हो गया है और शहर को एक नया क्रिकेट स्टेडियम भी मिलने वाला है। पुलिस ग्राउंड की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इस शहर के जुड़े हुए हैं, पर दौड़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कोई बेहतर सुविधा नहीं है। तो हम लोगों ने 5 लेन का वहाँ पे प्रस्ताव किया है, जिसपे जल्दी काम शुरू होगा। हमारे शहर में लगभग 25 ऐसे स्कूल हैं जो कि अभी जर्जर अवस्था में है। माननीय विधायक जी ने उसपे प्रयास करते हुए और माननीय कलेक्टर महोदय के प्रयासों से उन 25 का भी वर्क ऑर्डर जारी हो गया और हमारे वो स्कूल भी मूलभूत सुविधाओं से युक्त हो जाएंगे आने वाले दिनों में। तो ऐसे हम लोगों की बहुत सारी प्लानिंग है, जैसे अभी शहर में पानी का जो क्राइसिस हम देख रहे हैं उसको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए हम लोग अन्य व्यवस्थाओं पे भी जा रहे हैं, जिसकी हमारी कार्य योजना लगभग तैयार है। हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाला जो 1 साल है इसमें हम मूलभूत समस्याओं से बाहर आए और हम लोग अगले कदम पे आगे बढ़े। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं, शौचालय से शुरुआत की थी कि पहले मूलभूत सुविधाओं को हम लोग पूरा करें तब हम बड़े मुद्दों पे जाएं। तो उसी तरह से हमारा भी नगर का भी ये प्लान है कि पहले जो फंसे हुए मुद्दे हैं कई सालों के, पहले हम उसको सॉल्व करें, बेसिक मुद्दों को सॉल्व करें, फिर हम बड़े मुद्दों की तरफ आगे बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल, जो कर संग्रहण है वो भी एक महती कार्य होता है और इसमें भी जो नगर पालिका निगम है वो लोगों से अपेक्षा करता है कि वो समय पे अपने करों का भुगतान करें ताकि विकास के कार्य हो सके। हाल फिलहाल में अभी जनगणना का कार्य चल रहा है।
0: आपके माध्यम से सभी जनता को ये बात भी कहना चाहूंगा कि जनगणना के अंतर्गत हम लोगों ने अभी लगातार काम करना चालू कर दिया है, क्योंकि पहला फेज बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जनगणना का, जो कि 1 मई से 31 मई के बीच में चलने वाला है, जिसमें मकानों की जनगणना होगी, पूरे मकानों की नंबरिंग होगी, फील्ड वर्क करेंगे। मेन बात यह है कि 34 प्रश्नों का एक पूरा की पूरा लेखा जोखा प्रपत्र में भरा जाएगा, जो कि एक परिवार से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। तो जनगणना जो है ये लगभग 2011 के बाद अब हो रही है, तो ये हमारे लिए एक पर्व की तरह है, उत्सव की तरह है, और हमारी पूरी टीम और पूरा जिला प्रशासन इसको एक त्योहार के रूप में मनाने जा रहा है और इसमें सभी का सहयोग, पूरी जनता का सहयोग अपेक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल, मैं अंत में यही आपसे पूछना चाह रहा था कि इस समय पूरा बैतूल आपको सुन रहा है, तो आम जनता से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे उन्हें कि किस तरह से हम बैतूल को और आगे ले जा सकते हैं?
0: इसमें मुझे एक शेर याद आता है कि मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है इन बदमस्त हवाओं के खिलाफ। तो ये हमारी एक शमा है जो नगर पालिका, जिला प्रशासन और पूरा प्रशासन, जनप्रतिनिधि, ये सब लोग एक शमा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रोशनी जलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी जनता के हितैषी कार्यों को आगे बढ़ाएं, जो हमारे शहर को नंबर 1 बनाने में सभी जनता की महत्वपूर्ण भूमिका है, और यहाँ का जो जल संकट है उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें हमको जनता का सहयोग बहुत अपेक्षित रहेगा। इसके अलावा जो जनगणना का एक महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है जिसमें जनता का सहयोग हमें बहुत अपेक्षित रहेगा, तो सभी जनता से मेरी अपील रहेगी कि आप सभी लोग हमारा साथ दें और हमारे इस मिशन में हाथ से हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ें, ताकि हम लोग एक बेहतर समाज, बेहतर नगर और बेहतर जिला बना पाएं। तभी हमारा एक बेहतर देश बन पाएगा, विकसित देश बन पाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, उस दिशा में बैतूल भी आगे बढ़ेगा।
1: बहुत अच्छी जानकारी आज आपके साथ हमने साझा की हमारा बैतूल कार्यक्रम में नवनीत पांडे साहब, कि हमारे शहर के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं नगर पालिका परिषद द्वारा, और क्या अपेक्षाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं, और आने वाले समय में इस शहर को क्या कुछ सौगातें मिलने वाली हैं। इन सारी जानकारियों का और हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारा बैतूल।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा बैतूल में बैतूल नगर पालिका परिषद बैतूल के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री नवनीत पांडे से बैतूल शहर में नगर पालिका के विकास कार्यों पर बातचीत। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे समाचार संध्या।
2: चौहान के गाए इस गीत के साथ ही।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे के प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत

0: एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान

0: राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है।
1: एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
2: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
3: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
4: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए।

अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म घर में सुना। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन। अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम इज्जत।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। अगला गीत आशा भोसले और सुरेश वाडकर का गाया हुआ फिल्म है परिंदा। खुर्शीद के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर, ओ सड़क
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
3: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
0: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
4: आज के फनकार।
0: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
4: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
5: अब सुनिए एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज आशा भोसले की फिल्म का नाम ज्वेल थीफ।

0: विविध भारती,
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया, मेरे रंगू।

इंतजार की आई ना कुछ खबर

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रही कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका

सन 1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना। अरे या या या।

सन 1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी, जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी

शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

मीना जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गई। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीवी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले

दुल्हनिया ले जाएंगी फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजो की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

0: नारे नारे नारे।
1: सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ
0: ऐसी मूल यादें।

FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। दोस्तों कार्यक्रम आपके मीत ये गीत में हम आप तक पहुंचाएंगे वे गीत जिनकी फरमाइश आपने हमें लिख दीजिए है। आपकी इसी फरमाइश को हम शामिल कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम आपके मीत ये गीत में और आपको सुनवाएंगे आपके पसंद के गीत। तो चलिए हम फरमाइशों के इस सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहली फरमाइश लेते हैं। ये फरमाइश आई है दंतरेगी छत्तीसगढ़ से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती वर्मा, विनीता, रुद्र एवं समस्त वर्मा परिवार। आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म बड़े दिलवाला का ये गाना, और इसी गाने को सुनना चाह है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा एवं समस्त वर्मा परिवार। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आप ही के आसपास फिल्म बड़े दिलवाला का ये गाना।

श्रोताओं, अगली फरमाइश आई है फिल्म मुकाबला के इस गीत के लिए, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम ने। और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं मजनू का टिल्ला से कमल बालूचा, मधुर बालूचा, सागर एवं समस्त बालूचा परिवार, सपना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा माही एवं समस्त मलिक परिवार। तो लीजिए, आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं फिल्म मुकाबला का ये गाना।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमने ली है ग्राम दुल्लापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानसी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह एवं उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने हमें फरमाइश की है उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में फिल्म दीदार के इस गीत के लिए। तो लीजिए आपकी फरमाइश पर आप ही के रेडियो सेट पर सुनिए फिल्म दीदार का ये गाना।

श्रोता जो हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, या वो पहली बार सुन रहे हैं, या लगातार कई दिनों से सुन रहे हैं, परंतु आज तक उन्होंने अपनी फरमाइश हम तक नहीं पहुंचाई है और वो अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी फरमाइश दो तरीकों से, दो माध्यमों से भेज सकते हैं। पहला माध्यम है पोस्ट कार्ड। आप पोस्ट कार्ड पर हमें अपनी फरमाइश और अपना नाम, अपने परिवार का नाम और अपने दोस्तों का नाम लिखकर भिजवा सकते हैं। हम आपकी फरमाइश को अपने इस कार्यक्रम आपके मीत ये गीत में जरूर शामिल करेंगे। तो पोस्ट कार्ड पर यदि आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं तो आप हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बैतूल, पिन है 460001। एक तो आप इस पते पर हमको लिखकर भेज सकते हैं। दूसरा तरीका है आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें अपनी फरमाइश पहुंचा सकते हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से यदि आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं तो कृपया आप हमारा नंबर लिख लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141234722। एक बार फिर से पता सुन लें, 7141234722। तो आप इस पर भी व्हाट्सएप करके हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। आप अपनी फरमाइश हमें किस शहर, किस जिले और किस प्रदेश से भेज रहे हैं ये लिखना भी ना भूलें, ताकि हम आपकी आइडेंटिटी सही ढंग से दर्शकों के और श्रोताओं के बीच में पहुंचा सकें। और आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं उसको भी स्पष्ट रूप से लिखें, और साथ ही अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने साथियों और उन लोगों का नाम भी लिखकर भेजें जिन्होंने आपकी भेजी हुई फरमाइश को पसंद किया है। तो हम आपको आपकी पसंद के गीत के साथ साथ हमारे इस रेडियो कार्यक्रम में आपका नाम और पसंद करने वाले लोगों का नाम भी प्रसारित करेंगे। तो हमें इंतजार रहेगा आपके खतों का, आपके व्हाट्सएप मैसेज का, आपकी फरमाइश का। और गीतों की फरमाइश के साथ साथ आकाशवाणी बैतूल के दूसरे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं और आपके सुझाव भी हमारे लिए बड़ा महत्व रखते हैं, तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। और आप कैसे गीत सुनना चाहते हैं, कैसे कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, वो भी लिखना हमें ना भूलें। तो चलिए फरमाइशों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगली फरमाइश लेते हैं। ये फरमाइश आई है ग्राम कलाना भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव एवं समस्त कड़वासरा परिवार। आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शक्ति के इस गीत के लिए।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हम सफर आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों, मैं आपके रेडियो सेट तक वो नगमे पहुंचा रहा हूं जिनके लिए आपने लिख भेजी मैं अपनी फरमाइश, और आप ही की इस फरमाइश को हम पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे वो

श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश आई है जो हमने ली है, वो है फरमाइश बीड शहर महाराष्ट्र से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल एवं उनके बहुत सारे साथी। आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी है फिल्म खेल खेल के इस गीत के लिए, और इसी गीत को सुनना चाहे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। फरमाइश करने वाले जो हमारे श्रोता हैं वो हैं निर्मला, विशाल और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर आपकी पसंद का गीत आप ही के आसपास।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जल ले तो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए खुल्लम।

0: का है ये दुश्मन जमाना।
1: अरे तुम,
0: हाँ बता
1: सपनों में

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत अब संपन्न होता है, तो आकाश श्रीवास्तव को दीजिए विदा अगली मुलाकात के वादे के साथ। नमस्कार। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम और आइए सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।